सत्य हमारे विचारों को शक्ति देता है, शिवम हमारे कर्मों को पवित्र बनाता है, और सुंदरता हमारे दृष्टिकोण में जन्म लेता है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 सितंबर 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण भी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
3: ऋषिपुत्र अष्टावक्र विकलांग थे। उनके शरीर के 8 अंग टले थे। वे अत्यंत कुरूप भी थे, किंतु बाल्यावस्था में ही बड़े प्रतिभाशाली उद्भट विद्वान और ब्रह्मज्ञानी थे। एक बार वे जनक की विद्वत सभा में जैसे ही प्रविष्ट हुए, वैसे ही उस संगोष्ठी में उपस्थित पंडित समुदाय उनके उपहास में ठठाकर हंस पड़ा। इस पर राजा जनक को संबोधित करते हुए अष्टावक्र तबाक से बोले, हे राजन, मैंने तो सुना था कि आपकी इस सभा में विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया जाता है, किंतु घोर विडंबना यह है कि यहाँ तो निपट गंवार एकत्र हैं। इनमें कोई भी विद्या का पारखी नहीं है। चुनौती मिलने पर अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को पराजित किया और अपने अद्भुत ज्ञान का वर्चस्व स्थापित किया। प्रतिभाओं का मूल्यांकन और सम्मान देश काल रंग रूप वर्ग जाति संप्रदाय लिंग भेद से ऊपर उठकर होना चाहिए। जिस देश या राज्य में प्रतिभाओं को अभेद पूर्वक मान्यता नहीं दी जाती, उनके विकास एवं उत्कर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उल्टे उनका पतन अवश्यंभावी होता है। वैदिक काल से हमारे देश की मनीषी प्रतिभाओं ने और उनकी अप्रतिम रचनाओं ने देश को विश्व गौरव की आभा से मंडित किया है। श्रुति स्मृति काव्य कला कथा पुराण इतिहास हमारी मनोरचना समाज रचना और संस्कृति के प्राणाधार हैं। वेदव्यास ने वेदों और पुराणों की संहिताएं बनाई। अपने मूल संहिता साहित्य को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण सूत के सुपुर्द किया। उनके अन्य शिष्य सुमति आदि ने उपसंहिताओं की रचना की, जो कालांतर में 18 पुराणों के रूप में प्रस्तुत हुई। प्रबुद्ध वर्ग की गवेषणाओं तक मर्यादित युग युग से संचित गहन ज्ञान भंडार को लोक सुलभ बनाने और ग्राम ग्राम के हर कुटीर द्वार तक पहुंचाने का काम इन रोचक पुराणकारों और पुराणों ने किया। वेदों के भिन्न भिन्न चरणों के व्याख्या ग्रंथों के रूप में ब्राह्मण भाग की सर्जना हुई और वेदों की शब्द रचना अर्थ मीमांसा व्युत्पत्ति उच्चारण अनुष्ठान विधान की दिशा में विशिष्ट विद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हम छंद ज्योतिष कल्प शिक्षा निरुक्त और व्याकरण 6 वेदांग के रूप में जानते हैं। जिनमें निरुक्त के रचनाकार आचार्य यास्क, शिक्षा और व्याकरणकर्ता पाणिनि, कल्प आदि विधानों के प्रणेता आपस्तंभ आश्वलायन शांखायन बौधायन आदि उल्लेखनीय हैं। आदि काव्य रामायण के सर्जक वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता वेदव्यास के नाम प्रातः स्मरणीय हैं। वहीं सांख्य योग वेदांत मीमांसा न्याय और वैशेषिक नामक षड दर्शन और उनके दर्शनकार द्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत द्वैत्वाद्वैत आदि मत और उनके आचार्य शंकराचार्य आदि के नाम चिरस्मरणीय हैं। मनु याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकार, चाणक्य जैसे नीति राजनीतिकार, नागार्जुन भरद्वाज चरक सुश्रुत जैसे लोक स्वास्थ्य चिंतक, पतंजलि गौतम कपिल कणाद जैमिनी जैसे सृष्टि रचना रहस्य के उद्घाटनकर्ता, राम

0: अनुज, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद चंद्रशेखर वेंकटरमण, जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिकों का प्रदेय कितना महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसी आध्यात्मिक प्रतिभाओं ने विश्व गगन मंडल में भारत की आभांकित की है। क्या संत साहित्य और संतों को कभी भुलाया जा सकता है? क्या छोटी जाति में जन्मे कबीर, रैदास, नामदेव को हमने सम्मानित स्थान नहीं दिया? हम हीरों का खनन उत्खनन करें, हीरों का संस्कार समार करें और उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनकी पहचान, मूल्यांकन और उनका नियोजन करें। अन्यथा मिट्टी पत्थर मानकर हम उनसे वंचित रह जाएंगे और विश्व में हमारी चमक खो जाएगी।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सूरदास जी की रचना को। लीजिए सुनिए MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में सूरदास जी की रचना।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये भजन अभी आप सुन रहे थे हेमंती शुक्ल के स्वर में। रचना सूरदास की थी।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली
7: भारती।
0: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
10: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: हे गोविंद हे गोपाल, ये थे इस भक्ति गीत के बोल। अभी आप सुन रहे थे MS सुब्बुलक्ष्मी के स्वर में, रचना सूरदास की थी। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज चर्चा का विषय है टमाटर एवं बैंगन में उकठा रोग नियंत्रण के उपाय। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़।
1: किसान भाई जय जवाहर, राम राम। आज हम चर्चा करबो बैगन और टमाटर में एक मुख्य बीमारी होती है उकठा बीमारी, ओकर निदान कैसे किया जाए।

0: ओकर पहचान की कैसे किया जाए, काबर की यह बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है। तो मैं चर्चा कर रहा कि सबसे पहले टमाटर में जो उकटा बीमारी होते वो दो तरीके के होते, एक जीवाणु जनित भी होते और एक फफूंद जनित भी होते। सोलेनेसी में मिर्च, टमाटर, बैगन ये तीनों में भी होते, तो लक्षण लगभग समानता रहते। तो सबसे पहले हमन बात करबो कि जो जीवाणु जनित उकटा होते वह कैसे होते। तो किसान बंधु, जो जीवाणु जनित उकटा रोग होते ओकर जो पहचान ये है कि पौधा ग्रीन स्थिति में जब हरा हुए रहते और मुरझाए के शुरू होते, सबसे पहले वह एक तरीके से पत्ती और ऊपर से सुखत जथे और ऊपर से नीचे की ओर आज जथे, पत्ती झुरमुराज जथे। तो सडनली क्या होते कि दो तीन चार पांच दिन के अंदर में पत्ती अचानक से मुरझा जथे और हरा स्थिति से ही मुरझाते। यह बैक्टीरियल विल्ट जो जीवाणु जनित कथन एकर एक पहचान हुई, लेकिन सिर्फ लक्षण के आधार पे ही पहचान पाना वाला मुश्किल है। तो एकर लिए एक हमने एक छोटे टेस्ट करथन। तो किसान भाई का करथन कि जहा इसने मुरझात है ओला हमन जो संक्रमित पौधा है ओला जड़ से निकालथन और पानी में थोड़ा वाश करथन। ओकर बाद एक कांच के ग्लास लेबो और ओमे साफ पानी भर देबो। फिर जो जो जड़ भाग रहते वो जो तना और जहां से जमीन से कांटेक्ट में रहते वो भाग ले लेबो और कट करबो। कट करके हमन ओला वो ग्लास में कुछ समय के लिए 5 मिनट के लिए स्थिर रूप से रख देबो। ओला बिना डिस्टर्ब किए हुए किसी प्रकार से ग्लास ला हिलाना डुलाना नहीं है। तो कुछ समय बाद स्थिति ऐसे होते कि वहां ट्रांसपेरेंट टाइप के एक धार की तरह से ओमे ऊज निकलते। अगर एकर पहचान होगी तो यह बैक्टीरियल विल्ट हुई। अब बैक्टीरियल विल्ट अब फफूंद जनित विल्ट होते। अब एकर पहचान करने है तो फफूंद जनित जो उकटा रोग होते एमे भी पौधा मुरझाते। शुरू तो पौधा लगभग थोड़ा पीला पड़ के पत्ती है मुरझाए कस करते और उग्र स्थिति में पत्ती भी झड़ते भी, लेकिन यह बैक्टीरियल विल्ट के तुलना में थोड़ा धीरे धीरे होते। तो अब एकर पहचान करने के लिए अब एकर भी टेस्ट करबो तो एला का करबो कि जो जड़ है वो संक्रमित पौधा के ओला भी निकालबो और फिर उसने हमन पानी में थोड़ा धो लेबो और एकर बाद जड़ ला हमन क्रॉस करके काट के देखबो। तो अगर जो जड़ के भाग में वेस्कुलर डिस्क्लोरेशन कथन, मतलब वो जो जड़ वाला भाग है वो में भूरा काला कलर के दिखाई दे ही, अगर भूरा काला कलर के दिखाई दे दिस तो यह फंगल विल्ट हुई। अब एकर अब हमन साइंटिफिक रूप से पहचान कर दे रहे, अब एकर निदान करबो। तो बैक्टीरियल विल्ट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक थे ओला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ हमन मिक्स करके ड्रेंचिंग करबो और नेक्स्ट टाइम जब कोई भी हमन सोलेनेसी इस तरीके के जहां एक बार फसल आ गए है तो नेक्स्ट टाइम जब हमन एकर बीज उपचारित करबो, थरहा उपचारित करबो, मृदा उपचारित करबो और तब लगाबो, लेकिन खड़ी फसल में हमन ड्रेंचिंग ही कर सकत हन। तो किसान भाई ड्रेंचिंग के माध्यम से कुछ हद तक हमन कंट्रोल कर सकत हन। फंगल विल्ट के जब निदान के बाद इस तो ओकर लिए जो टेबुकोनाजोल फफूंद नाशी रसायन होते ओकर लगभग 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लेबो अपन ला जतका क्वांटिटी में चाहिए और ओला हमन सिंचाई के माध्यम से ड्रेंचिंग कर देबो। अगर ड्रिप उपलब्ध है तो ड्रिप के माध्यम से चला देबो और इस तरीके से हमन निदान पा जाबो। लेकिन किसान भाई एक चीज जरूर ध्यान रखिया कि अगर बार बार वही फसल ले था तो नेक्स्ट टाइम में कोशिश करा कि फसल चक्र अपनावा और फसल चक्र नहीं अपना पा था तो जय फफूंद नाशक जो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास से एकर प्रयोग विशेष रूप से करा। धन्यवाद।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम विवरण में। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:40 पर सुनिएगा रामचरितमानस का भाग 127। कार्यक्रम देशगान का समय होगा 6:50 का। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा सुनिएगा 7:35 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर का समय होगा 7:45 का। 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। व इसके ठीक पश्चात यानी कि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत का।

विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे और अपराह्न 12 बजे व रात्रि 9 बजे से। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 9:55 पर, 11:55 पर और संध्या 6:45 पर। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा हमारे केंद्र से आज सुबह 10:10 पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे आज सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा संध्या 5 बजे का। कार्यक्रम शाम गजल का आनंद ले सकेंगे शाम 5:10 पर। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा युवावस्था में पोषण आहार की आवश्यकता। चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा साइबर ठगी से रहें सावधान, इस विषय पर चर्चा। इसके साथ ही क्रम होगा पत्र मिला का। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:20 पर, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा संध्या 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस मास की पशुपालन कार्य। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनेगा मधुमक्खी पालन किसानों के लिए लाभकारी। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर, विविध संगीत रात्रि 10 बजे और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे आज सुबह 7:55 पर सुबह 10 बजे और सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:05 पर और 6:05 पर। कार्यक्रम विवरण में फिलहाल इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 127। शोभना राव के स्वर और सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में प्रस्तुत है मानस गान।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नवविवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुईं। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद

आशीर्वाद दे रहे हैं और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 127 अभी आप सुन रहे थे। शोभना राव के स्वर और सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मानस गान। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए। लीजिए सुनिए उषा टंडन व साथियों के स्वर में अबुल रहमान की ये देशभक्ति रचना। कार्यक्रम देशगान में

0: ऐसा देश मेरा है, ये थे इस देशभक्ति के बोल। अभी आप सुन रहे थे उषा टंडन व साथियों के स्वर में, रचना अब्दुल रहमान की थी। इसके साथ ही कार्यक्रम देशगान अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब हम रिले करेंगे 6:55 पर संस्कृत में व 7 हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। भारत फ्रांस मैत्री सम्बन्धान् प्रशंसयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पेरिस नगरे स्वामीनारायण मन्दिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्। तेन राष्ट्रपति मैक्रो वर्यस्य योगदानं संस्मृत्य प्रोक्तं यत् एआई प्रौद्योगिक्याः अथ जलवायु संकट निवारणस्य दिशि उभौ देशौ जागतिक नेतृत्वं वहतः। मन्दिर निर्माणं सांस्कृतिक सेतुरूपेण कार्यं करिष्यति इति तेन प्रतिपादितम्।
2: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम्, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भ्रामक

0: वार्तानां खण्डनं कृतम्। यासु इसरो संस्थायाः निजीकरणस्य उत तस्याः भूमिकायाः न्यूनीकरणस्य सम्भावना व्यक्ता आसीत्। सामाजिक माध्यमेषु प्रसारिते एकस्मिन् सन्देशे इसरो संस्थया स्पष्टीकृतं यत् न तु अस्याः निजीकरणं करिष्यते न च अस्याः महत्वं न्यूनं भविष्यति। संस्थया उक्तं यत् अन्तरिक्षक्षेत्रे निजीक्षेत्रस्य सहभागितायाः मुख्य उद्देश्यम् इसरो संस्थां भारतस्य भावि अन्तरिक्षकार्यक्रमस्य अग्रिमजनाः अनुसन्धानेषु अधिकप्रभाविरूपेण ध्यानं केन्द्रीकर्तुं सक्षमं करणम् अस्ति। यदा च उद्योगक्षेत्रं परिपक्वप्रौद्योगिकीनां क्षमतानां च विस्तारं करिष्यति। दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा रेखागुप्ता इत्यनया नवदिल्ल्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनस्य घटनायाः मजिस्ट्रियल इति दण्डाधिकारी अनुसन्धानस्य आदेशः प्रदत्तः तथा च भवनस्य स्वामिनः विरुद्धं एफआईआर इति प्राथमिकी पञ्जीकर्तुं निर्देशोऽपि प्रदत्तः। मुख्यमंत्री कार्यालयः अवदत् यत् घटना स्थलस्य समीक्षायाः घटनायाः प्रारम्भिक मूल्यांकनस्य च अनन्तरं अयं निर्णयः स्वीकृतः। सीएमओ कार्यालयः अवदत् यत् ये गभीर घटनायाः कृते उत्तरदायिनः इति ज्ञायते ते पूर्णतया उत्तरदातारः भविष्यन्ति तथा च विध्याः कठोरतम उपबन्धैः व्यवहृताः भविष्यन्ति। अत्रांतरे गतरात्रौ अपरस्य मृत शरीरस्य प्राप्ते सति अस्यां घटनायां मृतकानां संख्या 6 यावत् वर्धितास्ति। स्थले अन्वेषणस्य उद्धारस्य च कार्यम् अनुवर्तत। यत् दलानि भग्नावशेषान् निष्कासयितुं कस्यापि निबद्धस्य जनस्य अन्वेषणार्थं च कार्यं कुर्वन्ति। एनडीआरएफ, अग्निशामक सेवा, देहली आरक्षकाः, अन्ये च विभागाः च भग्नावशेषान् निष्कासयितुं स्थले कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य श्रीवेंकटेश्वर महाविद्यालयः दुखद भवनपतनस्य कारणात् अद्य निरुद्धः भविष्यति। महाविद्यालयः अवदत् यत् अस्थायी उपायरूपेण सत्यनिकेतनक्षेत्रे निवसतां छात्राणां मध्ये अनेकेषां वेतन अतिथि निवासस्थानानाम् असुरक्षायाः भावस्य च परिसमाप्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते स्वस्य वर्गेषु आवासं कल्पयति। भवनपतनस्य दृष्ट्या आर्यभट्ट महाविद्यालये अपि अद्य अध्यापनं स्थगितमस्ति। बिहार उत्तरप्रदेशयोः विभिन्नेषु भागेषु भीषण जलाप्लावनेन सामान्य जनजीवनं तीव्रतया प्रभावितमभवत्। बिहारे गंगा, गण्डक, कोशी चेति प्रमुखाः नद्यः संकटस्तरम् अतीत्य प्रवहन्ति। पटनायां गंगानद्याः जलस्तरः अनेकेषु घट्टेषु उच्चतम आप्लवं स्तरम् अतिक्रमति, येन अधोवर्तिक्षेत्रेषु उच्च सतर्कता वर्तते। उत्तरप्रदेशे 24 मण्डलानि आप्लावग्रस्तानि सन्ति, यत्र वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 5 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तथा जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। ये इमारत पेइंग गेस्ट आवास के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत ढहने के समय उसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वे संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉ मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। भारत ने एएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: समाचारों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश खिदमत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे गीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हमको दीवाना कर गए फिल्म के इस टाइटल सॉन्ग के साथ। आवाजें सोनू निगम, तुलसी कुमार और साथियों की है। गीत लिखा समी ने और संगीत है अनु मलिक का। प्रोग्राम का नाम चित्रपट संगीत। इस गाने के साथ ही आपका दिन मंगलमय हो।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

बद्रीनाथ की दुल्हनिया इस फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत अभी आप सुन रहे थे। अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल के युगल स्वर में गीत संगीत था अखिल सचदेवा का। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गानों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और इस कार्यक्रम की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गीत। जावेद बशीर की आवाज में गीत लिखा रजत अरोरा ने और संगीत है प्रीतम का।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। संदेश से पहले आप सुन रहे थे बुलेट राजा फिल्म का गाना। वाजिद, श्रेया घोषाल और बॉनी चक्रवर्ती के स्वर में गीत लिखा कौसर मुनीर ने और संगीत था साजिद वाजिद का। इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी सुनने वालों का प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा में। दोस्तों, हर सांस मायने रखती है और इसके लिए स्वच्छ हवा लोगों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा है, क्योंकि वायु प्रदूषण फेफड़ों के कैंसर, तीव्र श्वसन संक्रमण और हृदय रोग जैसी बीमारियों से हर साल कई लोगों की असमय मौत का कारण बनती है। वायु प्रदूषण हम सभी को असमान रूप से प्रभावित करता है। ये न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि जलवायु, आर्थिक विकास और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जलवायु परिवर्तन का एक कारण

वायु प्रदूषण है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि वायु प्रदूषण को काफी हद तक टाला जा सकता है, ताकि स्वच्छ वायु से वातावरण स्वच्छ हो सके, लोग ताजी और शुद्ध हवा में खुलकर सांस ले सके और पर्यावरण को भी कोई नुकसान न हो। वायु प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और कारगर प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज यानी नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वायु प्रदूषण लंबे समय से मृत्यु और बीमारियों का कारण रहा है, जिससे आर्थिक विकास और सामुदायिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वायु प्रदूषण को कम करना, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और कारगर उपाय करने होंगे। वायु प्रदूषण इंसानी सेहत के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिससे बचाव के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, इसलिए अपने घर के आसपास या खाली जगह पर पौधे लगाएं, ऊर्जा की बचत करें, जरूरत न होने पर लाइट, पंखे व अन्य बिजली उपकरण बंद रखें, प्लास्टिक को जलाने से बचें, इसके इस्तेमाल को कम करें या इसे इधर उधर न फेंकें, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाएं, जैसे सोलर पैनल और पवन ऊर्जा जैसे साफ ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाएं, वाहनों की नियमित जांच कराते रहें, पटाखे जलाने से बचें। दोस्तों, कुछ इस तरह वायु प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। और अब इसके साथ ही सुनते हैं ये गाना और कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का प्रसारण अभी हो रहा था। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मांदर। कार्यक्रम की पहली पेशकश में लीजिए सुनिए चतुर राम साहू व साथियों के गाए इस लोकगीत को।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

गंगादास मानिकपुरी और निर्मला मानिकपुरी के गाए इस युगल गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मांदर अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विवरण में। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वही इसके ठीक पश्चात यानी कि 8:30 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत का विविध भारती कार्यक्रम, जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुन सकते हैं सुबह 9:00, सुबह 11:00, अपराह्न 12:00 और रात्रि 9:00। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 9:55 पर, 11:55 पर और शाम 6:45 पर। सुगम संगीत का समय होगा 10:10 का। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी अमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5:00 का। कार्यक्रम शाम या गजल का आनंद ले सकेंगे शाम 5:10 पर। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे संध्या 5:00।

30 मिनट पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा युवावस्था में पोषण आहार की आवश्यकता। चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा साइबर ठगी से रहें सावधान, इस विषय पर जानकारी। इसके साथ ही क्रम होगा पत्र मिला का। फिल्म संगीत शाम 6:20 पर, शाम 7 और रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस मास के पशुपालन कार्य। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनेगा मधुमक्खी पालन किसानों के लिए लाभकारी। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर, विविध संगीत रात्रि 10 से, और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे आज सुबह 10 बजे और सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:05 पर और 6:05 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, 8 बजे समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वही इसके ठीक पश्चात यानी कि 8:30 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। समाचारों के अनुप्रसारण के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए। समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
4: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
4: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
5: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी। जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
10: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
11: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
12: देश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
3: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
13: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: भारत ने एएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
14: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
15: धन्यवाद सर फिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satyaniketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under 20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
4: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
16: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent BAPS Swaminarayanan Temple, a new chapter has been added to the India-France deep cultural relationship.
4: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
16: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured have been provided with all necessary medical assistance. The building was being used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Sri Venkateshwara College of the University of Delhi will remain closed today in the wake of the tragic building collapse. The All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, said that it received 11 patients who sustained injuries in the building collapse at Satyaniketan in New Delhi. Of the 11 patients, 5 were brought dead to the trauma center, while another patient who was in critical condition later succumbed to his injuries. According to the AIIMS, 3 patients have been admitted and are undergoing treatment. One patient underwent limb surgery, while another who sustained minor injuries was discharged after being kept under observation. Indian Space Research Organization ISRO has issued a clarification and reports circulating in the media regarding the speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said that it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program, while industry scales up mature technologies and capabilities. ISRO said the space sector reforms aim to create a larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem. It said the reforms should therefore be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah will chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. The meeting has been organized by the Interstate Council Secretariat of the Ministry of Home Affairs, MHA, and hosted by the Goa government. The Western Zonal Council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra, along with the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. We have more from a correspondent.
11: Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with the representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, will participate in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the center and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level can be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's Police Colour to Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
16: This is Akashwani giving you the news.

राग ठुमरी भैरवी अभी आप सुन रहे थे गिरिजा देवी के स्वर में। कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए गिरिजा देवी के स्वर में राग कजरी।

राग कजरी अभी आप सुन रहे थे गिरिजा देवी के स्वर में। इसके साथ ही कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है विविध भारती। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं जरा सोचिए, सेहत की नींव आखिर कहाँ से शुरू होती है? किसी महंगी दवा से नहीं, बल्कि हमारी थाली से, है ना? हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और आज है उसका आखिरी दिन 7 सितंबर, जिसका मकसद है लोगों को संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना, क्योंकि सही पोषण सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि बच्चों के विकास, अच्छी प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद भी तैयार करता है। घर की रसोई से लेकर स्कूल, आंगनवाड़ी और समुदाय तक संतुलित थाली, स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियों और सही खानपान की आदतों की बात पहुंचाने का ये दिन है। और क्योंकि स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, हर दिन की थाली में किए गए एक छोटे से सही चुनाव से होती है। तो श्रोताओं, आज हमारा कार्यक्रम पिटारा सेहतनामा ये इसी पर केंद्रित है, पोषण विषय पर। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का भाग एक आज प्रसारित होगा, तो आप इसे सुनना ना भूलिएगा। तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले का है और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। और इसी के साथ आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत कलयुग फिल्म का। अलीशा चिनॉय की आवाज में सईद कादरी का लिखा गीत, अनु मलिक का संगीत।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा,
3: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
4: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
4: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
3: उसने तोड़ी पारंपरिक समाज के बंधन।
4: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
4: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
3: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
3: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं आपको बता दें कि आज है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस। जी हाँ, यानी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिन। आसान भाषा में समझें तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद DMD जीन में बदलाव के कारण होती है। इसमें शरीर में डिस्ट्रॉफिन नाम का एक जरूरी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से समय के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। बचपन में चलने फिरने में देरी, बार बार गिरना या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं। यानी आज का दिन यही संदेश देता है, सही जानकारी सही समय पर पहचान ली जाए और संवेदनशील सहयोग ड्यूशेन से प्रभावित परिवारों के लिए और बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। और जागरूकता का सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि समाज मिलकर ड्यूशेन से जूझ रहे हर बच्चे और उसके परिवार के साथ सहयोग और संवेदना की एक मजबूत कड़ी बने, क्योंकि कभी कभी साथ का एक छोटा सा कदम भी किसी के सफर को थोड़ा आसान

ये गीत अभी आप सुन रहे थे सितारे जमीन पर, इस फिल्म से सिद्धार्थ महादेवन, शंकर महादेवन और दिव्य कुमार की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत। और इसी के साथ अभी वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम निर्देशक पी एल संतोषी पर केंद्रित रहेगा, जो कि आप सुन सकते हैं 9:30 पर सुबह और पुनः रात 9:30 पर। आलेख एवं स्वर जी श्याम का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। क्रिश फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कुणाल गांजावाला की आवाज में। विजय अकेले का लिखा गीत और राजेश रोशन का संगीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदनान सामी का गाया ये गीत फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से। समीर का लिखा गीत है, अदनान सामी का कंपोज किया।

अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत, बैड बॉय। इस फिल्म से हिमेश रेशमिया, अदिति सिंह शर्मा और असिस कौर की आवाजों में विनित सिंह ने साथ दिया है। कुमार के बोल और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्यारे लाल संतोषी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अगस्त 1916 को हुआ। एक निर्देशक के रूप में आपने 21 फिल्में निर्देशित की, कई गीत लिखे, स्क्रीन प्ले, आइडिया, संवाद, अतिरिक्त संवाद जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। निर्देशित फिल्मों में 1963 की फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: नजर।
1: हम एक हैं, ये वही फिल्म है जिसके माध्यम से पीएल संतोषी ने पहले पहल अपने निर्देशकीय गुण का परिचय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, दर्शकों को दिया। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, कमला कोटनिस, रहमान और देवानंद ने अभिनय किया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में पीएल संतोषी को असिस्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएल संतोषी के निर्देशन में 1947 में बनी उन्हीं की लिखी रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दुलारी और मुमताज अली अभिनीत शहनाई ने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी।

0: मुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे खाना मेरी जान संडे के संडे।
1: प्यारे लाल श्रीवास्तव, यही पीएल संतोषी का पूरा नाम था। जबलपुर से मुंबई कह सकते हैं एक संयोग की वजह से पहुंचे थे आप। हुआ यूं कि इनके गृह नगर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म यूनिट को संवाद असिस्टेंट की जरूरत थी, और प्यारे लाल जी चूंकि एक बेहतरीन लेखक थे वो फिल्म यूनिट से जुड़ गए, शूट से जुड़ गए। बात आई और यूं ही नहीं गई। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनकी अपनी लेखनी पर विश्वास और लोगों के प्रोत्साहन की वजह से सन 1930 के दशक के मध्य में आप एक लेखक और गीतकार बनने की प्रबल इच्छा के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आइए राज कपूर अभिनीत, पीएल संतोषी निर्देशित 1950 की सरगम के इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वो हम

जी हाँ, हम बात कर रहे थे सन 1930 के मध्य में बॉम्बे पहुंचे पीएल संतोष जी की, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में इनकी कला को सराहा और इन्हें प्यार से अपनाया भी। 1937 में इन्हें जद्दनबाई की फिल्म मोती का हार के लिए कुछ एक गाने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

जद्दन बाई के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं पीएल संतोषी। इसी साल यानी 1937 में जीवन यापन में भी चार गाने आपने लिखे। यही वो समय था जब पीएल संतोषी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की छलांग लगाते रहे, रंजीत स्टूडियो से बॉम्बे स्टूडियो और फिर प्रभात फिल्म्स। जब वो प्रभात फिल्म्स में थे तब 1946 में हम एक हैं फिल्म के निर्देशक का सौभाग्य इन्हें मिला। इनके द्वारा निर्देशित ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये गीत है इसी फिल्म का, आवाज अमीर बाई कर्नाटकी की है, संगीत हुसन लाल भगत राम का है।

शिंशिना की बुबलाबू 1952 की छमछमा छम, शिंशिना की बुबलाबू संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तली बनी फिल्म थी। लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में पीएल संतोषी का लिखा हुआ ये गीत।

संतोषी द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में हैं 1953 की 40 बाबा एक चोर, 1955 की सबसे बड़ा रुपया और हम पंछी एक डाल के सन 1957 की फिल्म।

1957 की ही फिल्म गर्मा गर्म और सन 1959 की फिल्म पहली रात पीएल संतोषी की करियर की फिल्में थीं जिनकी बदौलत आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। ये गाना है फिल्म दिल्ली जंक्शन का, स्वर लता मंगेशकर का है।

अब जिक्र है भारत भूषण और मधुबाला अभिनीत 1960 की फिल्म बरसात की रात का। ये फिल्म एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया और इस फिल्म का निर्माण किया था आर चंद्रा ने। रोमांटिक संगीतमय फिल्म के रूप में ये एक बेमिसाल फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

बरसात की रात एक बेहद सफल फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता फिर पीएल संतोषी अपने आगे आने वाले वर्षों में दोहरा नहीं पाए। प्यार की दास्तान, सबसे बड़ा रुपया, हॉलीडे इन बॉम्बे और फिर नूतन राज कपूर अभिनीत फिल्म दिल ही तो है, इनकी असफलता पर मरहम नहीं लगा पाई। सन 1968 में जगदीप और जयमाला काले को लेकर पीएल संतोषी की आखिरी निर्देशित फिल्म आई थी रूप रुपया। ये गीत है फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ता का, आइए सुनते हैं।

पीएल संतोषी ने कई फिल्मों को संगीतमय बनाया। सन 1937 से कई फिल्मों में इनके गीत जगह पाते रहे। तूफानी रोटी, बाजीगर, बन की चिड़िया, रिक्शावाला, आपकी मर्जी, पति पत्नी, ठोकर, अछूत, परदेसी जैसी फिल्मों में इनके गीत थे। ज्ञानदत्त और खेमचंद प्रकाश ने इनके गीतों को मौसिकी प्रदान की।

0: बॉम्बे टॉकीज में जब पीएल संतोष
1: और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा आज लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। केंद्र सरकार की नमस्ते योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। और कोंडागांव जिले में सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में छिपाकर रखा नक्सली डंप मिला है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा आज रायपुर स्थित लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। राज्यपाल रमेश डेका उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। न्यायाधीश महापात्रा का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की। उन्हें सिविल सर्विस, क्रिमिनल और संविधान आदि में काम करने का 26 साल का अनुभव है। केंद्र सरकार की नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पुदुचेरी भी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। यह योजना सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों की सुरक्षा तथा स्वच्छता कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। कोंडागांव जिले के पुष्पपाल क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में छिपाकर रखा नक्सली डंप मिला है। जवानों ने पिस्टल, करीब 6 वॉकी-टॉकी, बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला वायर, भारी मात्रा में बारूद और संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को रायपुर के कबीरनगर स्थित दशहरा मैदान में मोर माटी सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित तीजा पोरा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तीजा पोरा तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। तीजा पोरा हमारी माताओं, बहनों, परिवार और रिश्तों से जुड़ा पर्व है। वहीं पोरा हमारे अन्नदाता, किसानों, खेती और पशुधन के सम्मान का पर्व है। ऐसे लोक पर्व हमारी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवंत बनाए रखने के साथ समाज में आत्मीयता और स्वच्छता को भी मजबूत करते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थगित की गई 3 विषयों की परीक्षाएं आज से आयोजित की जा रही हैं। यह परीक्षा 8 और 9 सितंबर को भी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस बार सभी कॉलेजों को ईमेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजने की प्रक्रिया लागू की गई है। परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही कॉलेज प्रबंधन को पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। बिलासपुर में आयोजित 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का कल समापन हुआ। प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता के तहत बेसबॉल, तैराकी और वाटर पोलो की स्पर्धाएं हुई, जिसमें 5 संभागों के 845 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर लोगों के विचार जानने दुर्ग संभाग के प्रमुखों, प्रबुद्धजनों और जनप्रतिनिधियों के लिए कल और परसों समूह चर्चा और परिचयात्मक बैठक होगी। 8 सितंबर को दुर्ग में आयोजित बैठक में दुर्ग, बालोद और बेमित्रा जिले के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं 9 सितंबर को राजनांदगांव में होने वाली बैठक में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कांकेर जिले में महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस कंपनी में निवेश के नाम पर करीब 500 लोगों से लगभग 70 करोड़ रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने कंपनी में निवेश करने पर 5% ब्याज देने और 1.5 साल में रकम दुगनी करने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में

0: फंसाया। मामले में अंतागढ़ पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चीन की मोकी में बीते 4 सितंबर से 13 सितंबर तक जूनियर महिला एशिया कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले दो मैचों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। टीम में शामिल छत्तीसगढ़ की मधु सिदार और गीता यादव ने भी कुल 3 गोल दागे हैं। ये पहली बार है जूनियर टीम में प्रदेश के दो खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायाधीश कृष्णराम महापात्रा आज लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। केंद्र सरकार की नमस्ते योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान हासिल किया है और कोंडागांव जिले में सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में छिपाकर रखा नक्सली डंप मिला है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विवरण में। अब से कुछ पलों बाद यानी 10:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे आज सुबह 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे अपराह्न 12 बजे और रात्रि 9 बजे से। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 11:55 पर और शाम 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारा अमरकोट का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे का। कार्यक्रम शाम गजल का आनंद ले सकेंगे शाम 5:10 पर। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे संध्या 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा युवावस्था में पोषण आहार की आवश्यकता। चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा साइबर ठगी से रहे सावधान, इस विषय पर जानकारी। इसके साथ ही क्रम होगा पत्र मिला का। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:20 पर, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस मास के पशुपालन कार्य। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा मधुमक्खी पालन किसानों के लिए लाभकारी। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत रात्रि 10 बजे और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर।

0: आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंग दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी अब जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने, सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था, और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein is geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नमक जो नोवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें, तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। पेश खिदमत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की पहली पेशकश में लीजिए सुनिए राहुल जैन और आदित्य सिंह शर्मा के युगल स्वर में ये बहुत ही प्यारा गाना। रचना अमित दीप शर्मा की है और संगीत है राहुल जैन का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पलक मुच्छल और उत्कर्ष शर्मा के युगल स्वर में। गीत संगीत सतीश त्रिपाठी का है।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल

0: आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10:30 हुए हैं। पेश खिदमत है आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट रजनी का प्यार भरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नए पुराने गानों के साथ हाजिर हैं हम कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आप सबके पसंदीदा गाने के साथ। इसके लिए फरमाइश की पत्राया रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया सौरभ, शौर्य और शुभम जैन। ग्राम पंचायत बटेरा से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा और धनेश्वरी वर्मा। चटौदा सारा गांव से हैं सुजान वर्मा, सोहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा। एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। ग्राम दरचूरा से हैं ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू। सिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य, आशीष और प्रकाश सेन। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का वीर जारा फिल्म का बहुत ही प्यारा गाना। आवाजें लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की है। गीत लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत है मदन मोहन का।

0: दस लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश की अगली पेशकश में सुनवा रहे हैं हम आप सबकी पसंद का ये गाना। इसके लिए पत्र लिखा आप सबने। जतुका किशनपुर से हैं, आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हैं, हिना कैसर और मोहम्मद वकील, फिरोज आलम और नाज परवीन। छत्तीसगढ़ से हैं, दतरंगी से भागवत वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से हैं दुर्गाराम साहू। झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से हैं लक्ष्मण वाधवानी, विमला वाधवानी, हर्ष खुशी, शुभम वाधवानी और रोचल दास जग्यासी। श्रृंगी ऋषि महानदी से हवा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का कभी खुशी कभी गम का ये गीत। आवाजें कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम व साथियों की है। गीत लिखा समीर ने और संगीत है जतिन ललित का।

कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया आप सबने। पत्र आया मुकाम फुलसर व्याहा कटघोरा से हैं, चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से। नैनदास, शीतल दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, प्रीति दीवान, सिद्धांत, शौर्य, कुमारी सानवी, महिमा और पूरा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रमीत साहू और सीएल यादव। लिवई से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी। गौशालापारा रायगढ़ से हैं विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यीशु और अंशु गुप्ता। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये पत्र आया इसी गाने के लिए, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां का। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गीत। आवाजें अनुराधा पौडवाल और साथियों की है, गीत लिखा समीर ने और संगीत जतिन ललित का।

नए पुराने दिलकश गाने सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया आप सबने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से हैं कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और ललन मिश्रा। ढोली साकरा से हैं जयंत कुमार बैरागी। बलौदा अकलतरा से हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरग, जयतेग और मिका बिरग। इंदिरा नगर रायगढ़ से यही गीत सुनना चाह पत्राया शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा का। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का मस्ती फिल्म का ये गाना। आनंद राज आनंद की आवाज है, गीत लिखा समीर ने और संगीत आनंद राज आनंद का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आप

समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है विविध भारती कार्यक्रम। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: தரங்க தரங்க
1: बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का रंग तरंग कार्यक्रम में।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, बातिश और सुधा मल्होत्रा के साथ साथियों की आवाज़ थी। साहिर लुधियानवी का लिखा ये नगमा था, श्रोता रोशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: सदियां इस एल्बम में आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा और साबरी ब्रदर्स की आवाजें, समीर के बोल थे, अदनान सामी की तर्ज थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गटले
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
5: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
6: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
3: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
7: चिट्ठी न कोई संदेश।
3: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: तर्जर आवाज अदनान सामी की थी, समीर का लिखा ये गीत आपने सुना तेरा चेहरा एल्बम से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: फोन गौरव छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। फोन संवाद और प्रस्तुति थी प्रवीणा त्रिपाठी की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। बीजापुर, कोंडागांव और सुकमा जिले में सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में छिपा कर रखा नक्सली डंप मिला है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थगित की गई 3 विषयों की परीक्षाएं आज से आयोजित की जा रही हैं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा आज रायपुर स्थित लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। राज्यपाल रमेश डेका उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। न्यायाधीश महापात्रा का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की है। उन्हें सिविल सर्विस, क्रिमिनल और संविधान आदि में काम करने का 26 साल का अनुभव है। सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ के बीजापुर, कोंडागांव और सुकमा जिले में सर्चिंग के दौरान नक्सली डंप मिला है। बीजापुर जिले में सीआरपीएफ के जवानों ने पीडीए तथा कुप्पागुड़ा क्षेत्र के एड्री, हर्रा, नयापारा और सरपंचपारा के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए गए। बरामद सामग्री में एक 303 बोल्ट एक्शन राइफल, 5 भरमार राइफल और एक देसी 12 बोर राइफल शामिल है। इसके अलावा 10 आईडी, 8 डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, वायरलेस सेट, प्लास्टिक और स्टील कंटेनर समेत आईडी निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न इलेक्ट्रिक सामग्री और नक्सली कपड़े बरामद किए गए हैं। कुल 99 प्रकार की घातक सामग्री जब्त की गई है। इधर कोंडागांव जिले के पुष्पपाल क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में छिपाकर रखा नक्सली डंप मिला है। जवानों ने पिस्टल, करीब 6 वॉकी टॉकी, बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला वायर, भारी मात्रा में बारूद, विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। वहीं सुकमा के चिंतलनार थाना क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखा गया पुराना डंप बरामद किया है। चिन्ना बोड़केल गांव के पहाड़ी और जंगल इलाके में मिले इस डंप से बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें मिली हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थगित की गई 3 विषयों की परीक्षाएं आज से आयोजित की जा रही हैं। यह परीक्षा 8 और 9 सितंबर को भी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस बार सभी कॉलेजों को ईमेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजने की प्रक्रिया लागू की गई है। परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही कॉलेज प्रबंधन को पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। सुकमा जिले के कोंटा स्थित वाजमगुड़ा गांव में रविवार दोपहर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में एक साथ कई मवेशी आ गए। दंतेवाड़ा जिले में जंगली सुअर के शिकार के लिए लगाए गए अवैध जीआई तार की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीन के मोकी में बीते 4 सितंबर से 13 सितंबर तक जूनियर महिला एशिया कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले 2 मैचों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। टीम में शामिल छत्तीसगढ़ के मधु सिदार और गीता यादव ने भी कुल 3 गोल दागे हैं। यह पहली बार है कि जूनियर टीम में प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे 130 पर रविवार दोपहर हुए सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा आज लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। बीजापुर, कोंडागांव और सुकमा जिले में सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में छिपाकर रखा नक्सली डंप मिला है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थगित की गई 3 विषयों की परीक्षाएं आज से आयोजित की जा रही हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार

0: रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही

0: आभरण
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
2: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
0: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
2: सुबह और शाम
0: 6:45 पर
2: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बॉबी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म से। और अब आपको सुनाते हैं जहरीला इंसान फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओ,
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती, आप सुनेंगे थोड़ी देर में कार्यक्रम सुरीला सफर।

भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, सूरज ढलने के बाद एक क्षमा हमें अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाती है। जब अंधेरी रातों में जी घबराता है, क्षमा अंधेरों को चीरती रोशन होती है और अंधेरों से लड़ना सिखाती है हमें। कहीं इश्क मोहब्बत, कहीं इंसानी इल्म और समझ का रास्ता दिखाती है। न सिर्फ क्षमा बल्कि वो तमाम चीजें, वो तमाम लोग जो हमारी जिंदगी में रोशनी बनकर आते हैं, शायद क्षमा की ही तरह हैं, बेशक क्षमा की तरह हैं। और जिंदगी में अगर परवाने की बात की जाए तो परवाने की तरह हमारे लक्ष्य सधे होने चाहिए, चाहे रास्तों में कितनी भी अड़चनें आएं। और इसको ही लेकर एक इबारत हमने आज www.facebook.com/vbsmumbai के इस पते पर पोस्ट की है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उसे पढ़ा भी है और हमारे नए श्रोताओं के लिए, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये इबारत हम पढ़ देते हैं एक बार। शाम ढलते ही दरों दीवार पर क्षमा रोशन कर दी जाती है। अंधेरी रात के साए जब घरों और महफिलों में क्षमा रोशन होती है, चेहरे पर चांदी सी बिखर कर पास बिठाती है और कहती है, मेरे महबूब, दो हंसों की जोड़ी की तरह हम क्षमा परवाने इल्म की रोशनी, सच्चे प्रेम और समर्पण की दास्तान है। देखो ये रात ढलती जाए है लेकिन वो चुप रहे, प्यार की आबरू कुछ जफाओं कुछ वफाओं की खातिर। परवाने ने कहा, प्यार तो दीवाना होता है, तू क्षमा मोहब्बत की रोशनी के लिए जली, एक लक्ष्य एक जुनून की मिसाल बनी। आज की रात जो बसर हो गई, तेरी आगोश में जलने को फिर आऊंगा, सदियों पुरानी ये मिसाल फिर दोहराऊंगा। क्षमा तड़प कर बोली, मिटने की तकदीर तो दोनों की है, मेरे महबूब आज की रात तो न जा। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

महिपाल और गीतांजलि पर फिल्माया गया पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, इंदिवर के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आमतौर पर शम्मा परवानी की दास्तान को आत्मघाती आकर्षण का रूपक माना जाता है, लेकिन आज की इबारत में शम्मा को इल्म की रोशनी और एक लक्ष्य का प्रतीक बनाकर प्रेम को उच्चतर अर्थ दिया गया है। परवाने का शमा की ओर खिंचाव महज अंधा मोह नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य के प्रति एक सजग जुनून है। एक और श्रोता ने लिखा है, इस इबारत में प्रेम की गहराई विरह इंतजार जफा वफा और शमा परवाने के प्रतीकात्मक रिश्ते को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इल्म की रोशनी, लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण का संदेश भी इसमें छुपा हुआ है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत खूबसूरत है, इस बेहतरीन लिखावट में छुपे शब्दों के आधार पर आज सुरीला सफर में ये सदाबहार पुराने नगमे हो सकते हैं। शमा परवाने की बात है और कुछ गीत भी इन्होंने बहुत सारे गीत सुझाए भी हैं और भी हमारे श्रोता हैं जिन्होंने शमा परवाने के बारे में लिखा है। वैसे आपको बताएं श्रोताओं कि शमा शब्द पर जाने कितनी ही कविताएं लिखी गईं, जाने कितने ही शेर, जाने कितने ही अल्फाज और उद्गार बताए गए। दुनिया बदली, दौर बदले, लेकिन शमा उसी शान शौकत से आज भी जलती है। आपको कलाकार और फिल्म बताने हैं।

क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो शमा की तरह रोशनी बनकर आया, तो आप जरूर लिख सकते हैं। फिल्म अलबेला का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि कलाकार कौन से हैं, तो आपको ये बताना है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, दिया ही बहुत रोशनी के लिए। दिया सिर्फ रोशनी नहीं करता बल्कि चारों ओर के अंधकार को दूर कर देता है। इसी प्रकार इल्म या ज्ञान का दिया इंसान की अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, उसके विचारों को नई दिशा देता है जिससे वो अपना और समाज का विकास कर पाता है। ज्ञान का दीपक अनश्वर होता है, खूब तेज इल्म जिसे कोई चोर भी न ले सके। कोई अगर आपने अपने लिखे हुए शेर शमा पर लिखे हैं तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं, और कोई गीत अगर शमा पर लिखा है तो वो भी आप भेज सकते हैं। वैसे लाइट्स तो सभी को अच्छी लगती है, और खासकर तब जब अंधेरों में जलती है। लैंप, झूमर, लालटेन, दिए, मोमबत्ती, यानी तमाम जो शामें होती हैं वो इससे जगमगाती हैं। ऐसे बहुत सारे गीत भी हैं श्रोताओं जो इसी तरह के सिचुएशन में फिल्माए गए हैं। आपको इनमें से कोई गीत जो पसंद हो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, कभी देखा है शमा को गौर से जलते हुए, वो परवाने की चाह में अपने को मिटा देती है और उफ तक नहीं करती। प्रेम की सबसे गहरी भाषा है शमा, किसी से गहरा प्रेम हो जाए तो उसे पाने की जिद कभी मत करना, बस चुपचाप किसी जलती शमा के पास बैठना। जो कला जो हम में से हर एक को आनी चाहिए वो है शमा का शुक्रिया कहने का। वो कैसे अपने को जलाकर तुम्हारी शाम और रात रोशन करती है। शमा खुद जलती है और हमें प्रेम करना सिखाकर हमारी आत्मा का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है। शमा ही तो सृजन का मूल स्रोत भी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढलते ही घरों की दीवारों पर रोशनी के लिए लालटेन या चिमनी जलाकर उजियारा किया जाता रहा। ये दौर तो नहीं देखा पर जब इन्वर्टर नहीं आया था तब बरसात के मौसम में आंधी तूफान से बिजली की आपूर्ति बंद होने पर 2-3 दिन तक चिमनी की रोशनी में ही रहे। श्रोताओं ऐसा तो होता है, और फिल्मों में बहुत सारी जगहें ऐसी भी दिखाई गई हैं जब बैलगाड़ी जाती है और उस पर लालटेन की रोशनी होती है। ऐसा भी कोई गीत कोई सीन आपको याद आ रहा हो तो आप जरूर बता सकते हैं।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि बिजली और लिखती हैं कि बिजली और आधुनिक स्ट्रीट लाइट के आविष्कार से पहले सड़कों शहरों में कोयला गैस से जलने वाले लैंप पोस्ट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। शाम को इन दीपों या लैंपों को जलाने और बुझाने के लिए विशेष कर्मचारियों या चौकीदारों को रखा जाता था। कई जगह नागरिकों के लिए ये नियम था कि वे अपने घरों की खिड़कियों के पास रोशनी का प्रबंध कर दें। बचपन में हमने भी देखा है, शाम होते ही केरोसिन के लालटेन को गोईठा यानी उपले के राख से साफ करके फिर उसे मुलायम कपड़े से पोंछकर लालटेन जलाकर घर के दरवाजे दलान में रख दिया जाता था, जिससे सड़क गलियां जो है सभी तरफ का भाग जो है वो रोशन रहे। कलाकार आपको बताने हैं।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह होती है तो रोती है शमा महफिल की, रात भर जिसने उजाला किया उसे ही बुझना पड़ा। एक और श्रोता लिखते हैं कि छायावाद की मेरी आदरणीय महादेवी वर्मा जी की कविता से कुछ पंक्तियों को साझा कर रहा हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। एक और श्रोता ने लिखा है रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक तुम्ही जहाँ की, इस गीत को इन्होंने बताया है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो प्यार की जो शमा होती है वो दिल में हमेशा जलनी चाहिए। आज के जीवन में ये बात कितनी प्रासंगिक है ये आप हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, यूं ही मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। शमा परवाना प्रेम के प्रतीक स्वरूप हैं, जिनसे प्रेम की पराकाष्ठा और समर्पण का पता चलता है। सच्चा प्रेम किसी भी परिणाम से डरकर पीछे नहीं हटता। और फिर आगे इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आपको ये फिल्म और कलाकार पहचानने हैं

दिए कि रोशनी से जगमगाता ये गीत था जो रोशन था बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वैजयंती माला पर, और गंगा जमुना फिल्म का ये गीत था। इस गीत की डिटेल अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि किसका लिखा हुआ ये गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दोस्ती में एक दोस्त रोड पर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, ये तो है। एक और श्रोता लिखते हैं कि देवदास फिल्म के आखिरी दृश्य में दिलीप कुमार जी बैलगाड़ी में बेसुध पड़े हैं और लालटेन की रोशनी में गाड़ी चली जा रही है। एक और इन्होंने ही बल्कि लिखा है कि बचपन में गाँव में हमारी भी बैलगाड़ी थी, बारिश में ऊपर टप्पर लगाकर शहर खरीदारी के लिए जाया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद फिल्म में भी शमा लालटेन के रूप में दिखाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और गीत को भी इन्होंने याद किया है कि फिल्म में ये गीत था। आप ये नगमा सुने श्रोताओं, और बताएं कि ये किसके ऊपर फिल्माया गया है, मतलब किन अभिनेता और अभिनेत्री पर।

आशिक फिल्म के इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है। राज कपूर और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो है शम्मा परवाने की बात है, ढलती रात सदियों से मोहब्बत, समर्पण और वक्त के गुजरने के फलसफे को बयां करता आ रहा है। शम्मा का वजूद एक खामोश तड़प है, परवाना एक समर्पित दीवाना आशिक जो मरने की हद तक, इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं बहुत लंबी चौड़ी। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि ढलती जाए रात इस गीत को इन्होंने लिखा है। जी हाँ, बहुत सारे गीत थे आज जो हमने इसमें सोचा था कि आपको सुनवाएंगे। देखते हैं कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि शमा और परवाने के बीच प्यार का रिश्ता अटूट निस्वार्थ और आत्मघाती प्रेम कहलाता है। शमा जलती रहती है और परवाना ये जानते हुए भी कि वो जल जाएगा, फिर भी उसके प्यार में उसी तरफ खींचा चला जाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढले खिड़की तले और मेरे महबूब न जा, ये तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं और पसंद किए हैं। एक और सवाल आपसे कि जो हमने किया था कि जीवन में वो कौन है जो शमा की तरह आपके लिए रोशनी बनकर आया, आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओं।

रजिया सुल्ताना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपको बताना है श्रोताओं कि इस गीत में कलाकार कौन थे। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया भी है, तो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि अंधेरी रात में शमा की रोशनी जगमगा उठी, चांदनी की तरह बिखरती उस रोशनी में प्यार वफा और समर्पण की एक अनोखी दास्तान छिपी थी। शमा और परवाने का रिश्ता सच्चे प्रेम जुनून और तड़प की मिसाल है। कभी जफाओं की कसक, कभी वफाओं की आबरू, कभी महबूब की आगोश में बीतती रात, तो इन सभी एहसासों में प्यार अपनी पूरी शिद्दत से दिखाई देता है। शमा की तरह अपने लक्ष्य के लिए जलना और परवाने की तरह है। इसके आगे भी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं श्रोताओं। तो आपसे हमने पूछा था कि जीवन में आपके वो कौन है जो एक क्षमा यानी रोशनी की तरह आया, तो आप इस बारे में लिख सकते हैं। और जलती हुई क्षमा एक हमने पूछी थी कि जो फिल्म गंगा जमुना का गीत हमने आपको सुनवाया था उसमें दीपक की रोशनी है, दीपक की रोशनी और क्षमा की रोशनी, और अगर हम झूमर की बात करें तो उसकी रोशनी, ये सभी रोशनियों में आपको सबसे अच्छी किसकी लगती है और किस रोशनी के नीचे आपने कभी कोई शाम बिताई हो तो आप उस बारे में बता सकते हैं। यानी झूमर या कैंडल यानी मोमबत्ती या फिर दिए की रोशनी के तले कोई ऐसी सुंदर शाम बिताई हो जो आपके जहन में यादगार पल बन गई हो, तो आप ऐसी बातें हमें बता सकते हैं।

जहां आरा फिल्म का ये गीत आपने सुना मीनू मुमताज पर फिल्माया गया, और इसके पहले हमने आपको सुनवाया था रजिया सुल्ताना फिल्म का गीत जयराज और निरूपा रॉय पर फिल्माया गया। ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है और बिल्कुल ठीक है। तो हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जब मैं छोटी थी तो लैंप में पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। हम 5 भाई बहन एक साथ बैठकर शरारतें भी बहुत किया करते थे। वो समय दो हंसों का जोड़ा ये फिल्म थी, गंगा जमुना दिलीप कुमार वैजयंतीमाला। इस गाने में नायिका के अपने अकेलेपन के दर्द को नायिका बताती हैं, ऐसा इन्होंने इस गीत के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शम्मा परवाना और ढलती रात तीनों मिलकर मोहब्बत की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि खामोशी से मिटते जाने का हुनर है। परवाना एक पल में जलकर अपनी कहानी कह देता है, मगर शम्मा पूरी रात पिघल कर भी रोशनी बांटती रहती है। शायद सच्ची मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, एक जलता है दूसरा पिघलता है और रात चुपचाप बीत जाती है।

ये कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और फिल्म बतानी है। एक हमारी श्रोता लिखते हैं कि लाइट चली जाती थी तब लालटेन से पढ़ाई की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि धूल का फूल फिल्म में राजेंद्र कुमार लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि 60 के दशक में बैलगाड़ी से कई शादियों में हमने शिरकत की है, वो भी कई किलोमीटर तक।

राजेश खन्ना पर फिल्माया गया कटी पतंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिए की रोशनी में मेरी इनकी शादी के बाद इन्होंने लिखी है, तब बिजली नहीं थी, लालटेन दरवाजे पर जला करती थी, बाकी घर में दिए जलते थे जो मिट्टी के तेल से जलते थे। बाकी जो है एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि कटी पतंग फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया और इस गीत की डिटेल लिखी है इन्होंने। अब आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। खूबसूरत बेहतरीन अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। श्रोताओ, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि ये चिराग अंजुमन तो है बस एक शब के मेहमा, तू जला वो शम्मा ए दिल जो बुझे कभी न जल के।

अभिनेत्री चित्रा पर फिल्माया गया नूर महल फिल्म का ये गीत था सुमन कल्याणपुर की आवाज में। श्रोताओ, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम सुरीला सफर आज बस यहीं तक। आज का ये सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ।

आज की त्रिवेणी पनघट पर आधारित है। पनघट गांव के जीवन का धड़कता हुआ हृदय, जहां घड़ों में जल भरना, मन की बातें छलकती, खुशी के गीत गाती सखियों की टोली, हंसी की फुहारों, चूड़ियों की खनक, पायलों की रुंझन, लंबा घूंघट तो कभी दांतों तले दबा, उसमें से झांकती कचरारी अखियां, लोक गीतों की मधुर तान से पनघट का सौंदर्य और भी निखर जाता। भोर होते ही जब पनिहारी ने अपनी खाली घड़ी लेकर पनघट की ओर बढ़ती तो लगता मानो गांव की पगडंडी पर रंग बिरंगे फूल चल पड़े हों। सखियों की दुनिया बदल जाती, घर की जिम्मेदारियों से कुछ पल दूर वे अपने सुख दुख बांटती, एक दूसरे की चुटकी लेती और खिलखिलाकर हंस पड़ती। किसी की आंखों में सपने होते, किसी के मन में विरह और किसी के हृदय में किसी अनकहे प्रेम की हल्की सी दस्तक।

ब्रज में राधा कृष्ण की प्रेम भरी हंसी टिटोली, कहीं राह रोकने की शरारत, कहीं सखियों की हंसी और कहीं आंखों ही आंखों में कहे गए प्रेम के संदेश। पनघट के आसपास के वृक्ष झूम झूम कर हर्षित होकर हवा के संग नृत्य करते, हरे पत्तों की छटा आनंद के रस में सराबोर होते, मन को आकर्षित कर जाते। पनघट के रास्ते प्रेम का सुंदर पड़ाव बन जाते और मटकी भी अपने भीतर एक प्रतीक समेट लेती। वो केवल जल से भरा पात्र नहीं, स्त्री के जीवन की जिम्मेदारियों का मानो रूपक बन जाती। सिर पर धरी मटकी संभालते हुए पनिहारिन जिस सहजता से चलती, उसमें नारी के धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती।

समय बदला, गांव बदले और जीवन की सुविधाएं बढ़ी। घर घर नल और जल की व्यवस्था ने पनघट की आवश्यकता को कम कर दिया, लेकिन वो उस समय की याद दिलाता है जब जीवन थोड़ा धीमा था, रिश्तों में ठहराव था और छोटी छोटी मुलाकातों में आत्मीयता हुआ करती थी। लेकिन आज कुएं सूने हो गए, पनघट की चहल पहल खो सी गई, गांव की पगडंडियां भी सूनी पड़ गईं। पनघट से भरी गगरी में भरा जल शीतल मीठा किसी पथिक की प्यास बुझाने में सक्षम हुआ करता था। पनघट भी एक ऐसी स्मृति है जहां कभी मटकी में पानी भरता था और लौटते हुए मन में पूरा संसार भर आता था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
2: Ratification likely in the coming future.
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
5: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
6: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का हो उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
7: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च और रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेटेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है कि हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले चार दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
8: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने दो मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के छह जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के दो गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
9: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 टूरंट कम के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01-2331-0481, 2371-7161, 2371-7161 और 2331-4444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। MCD दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरना सबालिंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

अनपढ़ इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज। प्यार ही प्यार इस फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: दान सिंह का सर्वाधिकया ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना थी। मुकेश की आवाज में ये नगमा था माय लव फिल्म से।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गंगा की लहरें इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। चित्रगुप्त का संगीत सदाबहार नगमे कार्यक्रम की यही है श्रोताओं आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और हम आ गए हैं आज बहुत सारे विषय लेकर, कुछ व्यंजन लेकर और कथा सुधा लेकर।
1: बिल्कुल, वैसे हम ले तो आए हैं लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं सबसे पहले कि कोई भी मंजिल पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, सफलता तक पहुँचने के लिए संघर्ष बड़ा जरूरी होता है और संघर्ष की कहानी बहुत मायने रखती है। यूं ही कोई प्राप्य नहीं होता है।
2: बिल्कुल, मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन वो मेहनत भी कहते हैं ना कि संघर्ष उसमें बहुत है। मेहनत अलग चीज हुई, संघर्ष अलग है। और हर इंसान मेहनत तो करता ही है, चाहे वो छोटी से छोटा श्रम हो, परिश्रम हो, लेकिन कुछ लोग जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो कई सारे संघर्षों से होकर ही वो गुजरना पड़ता है। और जब भी हम बहुत सारे सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं ना तो पता लगता है कि कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा।
1: और संघर्ष, जो कहा जाता है कि सोना जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है, तो जितना आप संघर्ष कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, उतनी ही आसानी से आपको आगे चलकर जीवन यापन करना होगा, मतलब सफलता आपको मिलेगी। अब हमारे श्रोता क्या कहते हैं इस बारे में, अपने संघर्ष की कहानी वो हमें बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और कैसे उन्हें सफलता मिली, और उन्हें ही नहीं उनके घर वालों को, उनके बच्चों को और उनके परिजन मित्रों को।
2: और वो ये भी हमें बता सकते हैं कि क्या किसी की सफलता ने उनको प्रेरित किया, उनके संघर्ष की कहानी ने उनको बहुत सारी प्रेरणा दी जिसको सुनकर वो अपने जो भी मुश्किलें आ रही थी उनसे उबर कर आगे बढ़ पाए।
1: अच्छा, एक बात बताइए चंचल जी कि पिछले दिनों आपने आसमान तले कब आप यूं ही खड़ी रही और आसमान, नीला आसमान कब देखा? वो धुंधला वाला नहीं, नीला नीला आसमान जो कहा जाता आसमानी रंग, वैसा आसमान देखा?
2: आसमान का आसमानी रंग ना आजकल बहुत सारा जो प्रदूषण है उसके आगे कहीं धुंधल का सा छा गया है, वो दिखाई ही नहीं देता। और कई बार जब हम छत पर सोया करते थे तारों की छाव में, वो तारों की छाव भी खासतौर पर महानगरों में ना तारे नजर ही नहीं आते हैं। अगर नजर आएंगे भी ना तो रात के 1-2.5 बजे के बाद में, जब थोड़ा सा पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो जाता है ना, तब आपको कहीं थोड़ा सा आसमान साफ नजर आता है।
1: महानगरों से अगर हम किसी गांव की ओर जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि आसमान बिल्कुल सामने नीचे उतर आया है और तारे झिलमिल झिलमिल तारे एकदम चमकते हुए नजर आते हैं। और महानगरों में आप पूरी अपने मुंडी को ऊपर कर दें तब भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तारे छुपे रहते हैं। तो स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, 7 सितंबर को इसे खासतौर से याद किया जाता है।
2: बिल्कुल, और आज वायु प्रदूषण के कारण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्या और बहुत सारे देशों में अर्थव्यवस्था और विकास को भी चुनौती मिल रही है।
1: तो इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज अपने प्रोग्राम के दौरान, और कुछ व्यंजन की बातें भी तो होंगी।
2: बिल्कुल, आज से हम शुरू कर रहे हैं, सितंबर का महीना शुरू हो रहा है और कश्मीर के जो व्यंजन है इनकी बात होगी। तो दमालू भाई पंजाबी भी होते हैं लेकिन दमालू कश्मीरी भी होते हैं, तो कश्मीरी दमालू की रेसिपी की आज बात की जाएगी।
1: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और अब क्या एक गाना सुन लिया जाए?
2: पहले गीत सुन लेते हैं।
3: ना ये जमीन थी ना आसमां था, ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच

0: न ये आसमां था न ये जमी थी, भाई आसमान की तलाश कौन नहीं करता है।
1: बिल्कुल, ये उन दिनों की बात हो गई ना जब प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं था, तब ऐसी जमीन और आसमान नहीं थे, और अब ये जमीन आसमान हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आता है। हालांकि स्वच्छ हवा हमारा जन्म से अधिकार है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की 99% जनसंख्या ऐसी है जो ऐसी ही तरह की हवा में सांस ले रही है जहां बहुत सारा प्रदूषण है, और इस नुकसान से खुद को और आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को कुछ बातें समझनी जरूरी हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि वायु को शुद्धता रखने के लिए जो है हम कचरा जलाना बंद करें, विद्युत कचरे का निस्तारण करें, सप्ताह में एक दिन वाहन मुक्त दिवस मनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ईवी को अपनाएं और सह वाहन यात्रा को अपनाएं कि अगर हमारे उसी रास्ते से कोई जा रहा है तो हम उसको साथ में ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और एयर के क्वालिटी इंडेक्स को देखने की आदत भी बनाएं।
0: चंचल जी, जो सूक्ष्म धूल कण होते हैं हमारे फेफड़ों से सीधे रक्त में चले जाते हैं, इससे केवल श्वास रोग ही नहीं होता है बल्कि हृदय रोग होता है, मानसिक अवसाद भी बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो धरातल के निकट ओजोन परत अधिक बनती है, लू और स्थिर वायु की स्थिति में प्रदूषक जमीन के पास ही फंस जाते हैं जिससे हवा और ज्यादा विषैली हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए 7 सितंबर को स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। पहली बार ये दिवस 2020 में मनाया गया था, ये इस बार 7वां वर्ष है
1: और 2026 में इसकी जो थीम रखी गई है वो है क्लीन एयर फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्यवाही के लिए स्वच्छ वायु होना जरूरी है। इसका मतलब यही हुआ कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दो अलग चुनौतियां नहीं बल्कि दोनों का एक ही मतलब है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, पराली जलाना, ये हमारे हवा को भी खराब करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा देते हैं।
0: जबकि हवा हम सबके लिए जरूरी है, बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम याद रखें कि स्वच्छ वायु विलासिता नहीं है बल्कि हमारे भविष्य में किया गया निवेश है, और स्वच्छ वायु और नीला आकाश तभी होगा जब स्वस्थ विकास होगा। और हम सब की निजी तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे हाथ में जो कुछ है वो हम कर सकते हैं, कम से कम इर्द गिर्द पौधारोपण तो कर सकते हैं, पौधे लगाएं तो शायद थोड़ी बहुत शुद्ध हवा आपको मिल सकती है। फिलहाल कथा सुधा सुनते हैं।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के।
4: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलती बतलाने के लिए मैंने मियां राहत को अपने यहां रख छोड़ा है। मियां राहत वास्तव में कवि हैं, वो नामी आदमी नहीं हैं। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरे में वो नहीं जाते, या यूं कहिए कि मुशायरों में वो नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरे में न पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हाँकते पर फिर भी कवि हैं, इतने बड़े कि आजकल के नामी नामी शायर सब एक साथ उन पर निछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बारामदे में देखें जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूछ नदारत लेकिन दाढ़ी तोंद तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खिंचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंकलाट का गरारेदार पजामा पहने हुए हो तो आप समझ लो कि यही मियां राहत हैं। वो आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बैठलाकर मुझे आपकी इत्तिला देंगे और फिर धीरे से वहां से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी भी हालत में नहीं समझ सकते और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं। मियां राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले भी मैं उन्हें देखता आता था, पर उस समय मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का पता ना था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने लाल पगड़ी बांधे हुए मियां राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतलाते हुए देखा था। इक्के वाले झुककर मियां राहत को सलाम करते थे और उनकी कुशल क्षेम पूछते थे और मियां राहत मुस्कुराकर उन सबको जवाब देते थे। साथ ही इक्के वाले और तांगे वाले उल्टे सीधे दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी इक्का तांगा ले जाते थे। मुझे शक था कि मियां राहत शायर अवश्य होंगे। कभी कभी सवारियों को अपने भाग्य पर छोड़कर मियां राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए चौराहे के एक कोने में नजर आते थे। कभी कभी वो अपनी पेंसिल से नोटबुक में कुछ दर्ज भी कर लेते थे। पहले तो मैंने समझा मियां राहत किसी का चालान कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका गुनगुनाना सुना तो बात समझ आ गई। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का समय था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटरें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तब पैर आप ही आप रुक गए। आंखों ने मियां राहत को ढूंढ ही तो निकाला। एक किनारे खड़े हुए मियां राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुक कर मैं राहत को देखने लगा। इसी समय चौक की तरफ से कार तेजी से आई और अपनी दाहिनी ओर मियां राहत पर चढ़ती हुई आई। कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटे से कम ना होगी। मियां राहत अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर ना थी। मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियां भागो नहीं तो जान गई। मियां राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियां राहत को लग ही तो गया और राहत ला हौल विला कुवत कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियां राहत को उठाया, चोट ना आई थी, सिर्फ घुटने और कोहनी कुछ छिल गए थे। उठते ही मियां राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से एक 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियां राहत के पास आई। बहुत सुंदर, गोरी और यौवन भार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियां राहत से पूछा,
5: ओहो, अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी?
4: मियां राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा। इसके बाद वो भी मुस्कुराए।
6: नहीं, चोट तो ऐसी कोई लगी नहीं, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए।
4: युवती ने 5 रुपए का नोट मियां राहत को देते हुए कहा।
5: वो क्या है ना कि अभी हाल ही में मोटर चलाना सीखी है। एक मिनट, लो ये 5 रुपए, अपने बचने की खैरात बांट देना।
4: अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियां राहत ने अपना मुंह फेर लिया।
6: मिस साहब, मेरी क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूँ। आप लोगों पर अपनी जान न्योछावर करने में भी मैं फख्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, ये खैरात बांट दीजिएगा।
4: वो युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियां राहत ने उसे झुक कर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियां तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियां राहत बोले,
6: क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए और आप चालान करने की बात करते हैं।
4: इतना कहकर मियां राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये दो पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियां राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में ना था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियां राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियां राहत मेरे यहां प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी दाद भी देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियां राहत मेरे यहां ना आए थे। एक दिन शाम के वक्त बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियां राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें डबडबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियां राहत खैरियत तो है? ये तुम्हारी क्या हालत, क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा,
6: बाबू साहब, उफ, बाबू साहब।
4: इसके बाद वो लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है?
6: नहीं।
4: मियां राहत ने ठंडी सांस ली। तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं?
6: हाँ।
4: राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली। अरे भाई, कुछ बतलाते क्यों नहीं कि क्या हुआ? मियां राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया,
6: बाबू साहब उस दिन की बात तो आपको याद है ना? जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था।
4: हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूँ?
6: बाबू साहब, अब कैसे बताऊं, उस दिन वो जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वो, अरे क्या बताऊं, वो मिस साहब एक वो जो बड़ी पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी में काम करती है।
4: हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, उनका नाम सुशीला देवी है ना?
6: है? बाबू साहब यही नाम है। आज वो गिरफ्तार हो गई।
4: अरे तो फिर इससे क्या?
6: अब क्या बतलाऊं बाबू साहब, अरे मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था।
4: मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मियां राहत

0: रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा,
1: बाबू साहब ये सरकारी नौकरी बड़ी खराब है, इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोंटकर कितना बड़ा गुनाह किया।
0: मैंने कहा, मियां राहत इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं, तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, इसी के लिए तो तुम तनख्वाह पाते हो। मियां राहत चिल्ला उठे,
1: मैं नहीं चाहता ये तनख्वाह, इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूं।
0: मैंने देखा मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा, मियां तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी बच्चों का नाम सुनते ही मियां राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया।
1: क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता।
0: इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंखों से दो आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वो जीवन भर कभी ना भूलूंगा। मियां राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पले लगा रही थी। बीवी रो रो कर कह रही थी,
2: अरे निगोड़ा निगोड़ा कलुहा कहीं का, नौकरी छोड़ाया हम लोगों को भूखा मारने के लिए, भूखा मारेगा। हम लोग क्या खाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे, ले नौकरी छोड़ने का मजा ले, ले मजा ले।
0: मियां राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बेर बेर गा गा कर पढ़ रहे थे।
1: हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय ये इश्क।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, जयंत पात्रिकर, नेहा देसाई और ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: कथा सुधा सुन रहे थे श्रोता अभी, और अब गाना सुनते हैं ये।

0: सिखियां और सखा ये गाना सुन रहे थे। अब चंचल जी घड़ी की ओर देख रही हैं कि ये ब्रेक का समय हो गया है, तो लेते हैं
1: अंतराल का समय हो गया है और अंतराल के बाद हम फिर आएंगे बातें करने।
0: छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली
1: और गीत ये कथा सुधा से पहले हमने बात की थी स्वच्छ वायु नीले आकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं यानी कि 7 सितंबर को। एक है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस और ये हर साल 7 सितंबर को हम मनाते हैं। ये एक पेशीय दुपोषण का अनुवांशिक दुर्लभ रोग है और इसमें क्या होता है कि शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन है वो नहीं बनता जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और मुख्य रूप से ये बीमारी जो है लड़कों को या पुरुषों को प्रभावित करती है और लड़के अधिकांश 15 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और इस दिन का उद्देश्य यही है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके ताकि जो उपचार है वो भी समय रहते किए जा सके।
0: बिल्कुल। और चंचल जी आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी है, 7 सितंबर है। 7 सितंबर 1923 को वियना में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग बना था जिसे आज हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसी ऐतिहासिक याद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 में प्रस्ताव पारित किया और 2023 से हर बरस 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है।
1: और ममता जी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध अपनी कोई सीमा नहीं देखते, साइबर अपराध हैं, मानव तस्करी, मादक पदार्थों के अपराध हैं, आतंकवाद है, ये एक देश से शुरू होते हैं और दूसरे देश में जाकर समाप्त होते हैं। तो एक देश की पुलिस अकेले वहां कुछ नहीं कर पाती, तब ऐसे समय पे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल की बहुत जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल सही।

0: बनती है।
1: बिल्कुल
0: और एक लाइन में अगर कहें ममता जी, तो सीमा पार सहयोग तभी सुरक्षित हर योग, या फिर विश्वास ही है शक्ति, पुलिस है जन की भक्ति।
1: सही बात है, और हमें चाहिए कि हम उन सभी पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं, और संकल्प लें कि हम विधि के पालन में सहयोग करेंगे। और अब एक गाना सुनते हैं, ये

0: कौन अपना कौन पराया फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में सखियां और सखा सुन रहे थे। और चंचल जी, जब हम कोशिश करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या हार मान के बैठ जाना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। और वैसे भी समाज में प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, तरक्की, पढ़ाई में अव्वल आना, कुछ भी होने दो, लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो संघर्ष के बिना तो वो संभव ही नहीं है। और ममता जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संघर्ष हमारे जीवन को तराशता है, निखारता है, संवारता है, और फिर हमें एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि दुनिया में हम किसी भी जगह पर एक मिसाल भी बन सकते हैं। और हम जो भी अथक प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम संघर्ष कहते हैं ना, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है, और निसंदेह वो अतुलनीय भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी तरह की एक बात हमारी एक सखी कह रही है, इसी तरह की बात कि जिंदगी के बुरे दौर में मिलने वाली छोटी बड़ी असफलता से बजाय घबराने के, हमें उसी में से रास्ता खोजना चाहिए। कई लोग अपनी असफलता

0: सफलता की तरफ कुछ ज्यादा ही देखते हैं और नए सपने देखने का जोखिम उठाने से डरते हैं। दरअसल सफलता का हर तार हमारे भीतर ही जुड़ा होता है, आवश्यकता है उसे तार को सही तरीके से कसने की। उस तार को, अपने भीतर के तार को सही कसकर ही कोई एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है, जीवन के संघर्ष जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव हमें कराते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान भी करवाता है, हमेशा सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत हमें पता लगती है और इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं और जीवन जीने के जो सही ढंग हैं उसको सीख पाते हैं।
0: बिल्कुल, दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में सफलता की उम्मीद करता है जिसके लिए वो परिश्रम भी करता है। कई बार कुछ अलग करने की इच्छा और प्रबल प्रेरणा से हम अपने मुकाम के करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों को सामने देखकर हार मानकर अपनी सफलता से वंचित हो जाते हैं।
1: इसी तरह से एक संदेश हमें ये कह रहा है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों और संघर्ष से होकर गुजरता है। कठिनाइयां इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, असफलताएं मुश्किलें असली ज्ञान और अनुभव सिखाती हैं। बड़ी सफलता के लिए लंबा धैर्य और निरंतर प्रयास इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। सुडौल अक्षर को लिखने के लिए बचपन में ही स्कूलों द्वारा हमें शिक्षकों द्वारा एक दो पेज लिखने के लिए कहा जाता था और निरंतर अभ्यास से लिखावट में सुधार आता है, अक्षर सुंदर हो जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी में भी सफलता के लिए ये सूत्र लागू होते
0: जब
1: हैं।
0: लिखने के लिए कहा जाता था सुलेख लिखना,
1: हाँ,
0: तो सबसे कठिन लगता था कि अरे क्या मतलब, कठिन से मतलब कि उबाऊ लगता था कि एक दो लाइन लिखने के बाद लगता था कि वही बात क्यों लिखवाया जा रहा है कि भारत हमारा देश है, हमारा देश जानों प्राणों से प्यारा है, और उसी एक लाइन को बार बार बार बार लिखना। तो तब ये बात नहीं समझ में आती थी कि अगर ऐसे ही अभ्यास की आदत पड़ी रहेगी तो आगे जब कठिनाइयां आएंगी तो कठिनाइयों से जूझने की आदत पड़ेगी। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कहते आए हैं कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। याद रखें कि अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
1: ये बात आपने बड़ी सही बताई, कई बार आधे रास्ते में आगे लगता है ना कि चलो भाई वापस चले, कितना दूर है, जबकि अगर हम थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं तो शायद उतनी ही दूरी पर मंजिल।
0: यहाँ पर तैरने वाले का उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि जो लोग तैराक होते हैं, अगर नदी पार कर रहे हैं और आधी नदी तक उनका हौसला टूटने लगे तो क्या कर सकते हैं, बीच नदी से पीछे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है और आगे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हाथ पैर मारते रहें, कोशिश करते रहें।
1: बिल्कुल, आगे बढ़कर मनचाही सफलता नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसका अनुभव हमें मिलेगा और बार बार हार कर अपनी हिम्मत के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, यही संघर्ष होता है।
0: और यहाँ पर बात ये बनती है कि हमें गाना सुनवा दें।

0: तो चंचल जी, हम बात कर रहे थे सफलता प्राप्ति का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है, और हमारे श्रोता भी इस मुहिम में आगे आ चुके हैं और वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि संघर्ष ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, कभी ठोकर देकर संभलना, कभी आंसू पोंछकर मुस्कुराना। आज जो थोड़ा भी मजबूत हूं उसमें मेरी मुश्किलों का बड़ा हाथ है। शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, हमें अपने आप से मिलाने आता है। क्या बात है,
1: ममता जी। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा, जीवन जीने के आनंद को, सच्ची खुशी को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जिस तरह बिना चोट के पत्थर को भी भगवान का रूप नहीं दिया जा सकता, कहने का मतलब यह है कि किस कोई भी मूर्ति जब गढ़ी जाती है तो कई बार उस पर चोट की जाती है, तब वो अपना आकार लेती है। और ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी संघर्ष की तपिश ना हो तो वो निखरेगा कैसे और शिखर तक पहुंचेगा कैसे, या फिर अपनी मनचाही सफलता को कैसे पाएगा।
0: बिल्कुल, और संघर्ष के सूत्र को हम समझ लें तो उस पर चलने की कोशिश हमें करनी होगी, कि मतलब अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी देर सवेर। संघर्ष के डर से जीवन में कभी अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं। आज का संघर्ष हमारे कल को सुरक्षित करता है। ये सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी सामाजिक पारिवारिक समस्या आन खड़ी होती है, तब लक्ष्य के प्रति संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ भी जाता है।
1: और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुश्किलों से घबराने की बजाय उनसे सीखता है, वही आगे चलकर सफलता का असली आनंद महसूस करता है। इसीलिए रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, हिम्मत ना हारें, कदम ना रोकें और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि संघर्ष जितना सिखाता है सफलता उतनी ही अच्छी लगती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि सच तो यही है, सफलता का रास्ता संघर्ष से है, लेकिन ईश्वर संघर्ष रहित जीवन भी देते हैं। किसी किसी को चांदी और सोने के चम्मच और थाली वाले घर में ही जन्म दे देते हैं, तो उनके लिए संघर्ष के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिना संघर्ष सफलता मिलना काफी मुश्किल है। जीवन में संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना संघर्ष या कठिनाइयों का सामना किए बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती, मतलब बिना संघर्ष के।
1: बिल्कुल, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी, हम इस बात को याद रखें। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, गीत सुन लें।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई गाना हो गया, अब खाने की बात भी जरूरी है।
1: हाँ, गाने के बाद खाना।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं ने जो व्यंजन लिख भेजे हैं हम वही उन तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी दम आलू और सामान्य आलू दम के बीच मुख्य अंतर उनकी ग्रेवी सामग्री और बनने की विधि में होता है। कश्मीरी दम आलू में इसमें प्याज लहसुन और टमाटर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी ग्रेवी मुख्य रूप से फेंटे हुए दही पर आधारित होती है। सामान्य आलू दम उत्तर भारतीय या पंजाबी शैली के आलू दम में प्याज लहसुन और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती है। इसमें काजू का पेस्ट या क्रीम भी डाली जाती है जिसमें ये अधिक मलाईदार बनता है। कश्मीरी आलू दम में सूखा हुआ अदरक, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
1: तो ये तो हुई एक संदेश की बात। अगले संदेश में इसको बनाने की पूरी रेसिपी बताई गई है और इसमें बताया गया कि कश्मीरी दम आलू बिना प्याज लहसुन के बनने वाली बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है बेबी आकार के पोटैटो, यानी कि 500 ग्राम हमें आलू लेने, छोटे छोटे आकार के। सरसों का तेल लेना है ग्रेवी के लिए और तलने के लिए। ताज़ा फेटा हुआ दही करीब एक कप लेना है। सौंफ पाउडर एक बड़ा चम्मच लेना है। सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर आधा बड़ा चम्मच लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिसे थोड़ी रंगत अच्छी आ जाएगी वो एक बड़ा चम्मच लेना है। दो चुटकी हमें हींग लेनी है और खड़े मसाले में हमें लेने हैं जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची। नमक लेना है हमें स्वाद

0: अनुसार। अब बनाने के लिए जो आलू है उनको तैयार कर लें, उनको थोड़ा 50% तक उबाल कर और छील लिया जाता है। अब किसी कांटे से या टूथपिक से आलू में छेद कर दिए जाते हैं ताकि मसाले इनमें अंदर तक जा सकें, और इन आलू जो छोटे छोटे आलू हैं इनको सरसों के तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लेना है, और थोड़ा सा इनकी जो ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी हो जानी चाहिए तब तक हमें इन्हें तलना है। और मसाले का एक पेस्ट बनाना है, उसके लिए एक कटोरी में फेटा हुआ दही, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू तले थे थोड़ा सरसों का तेल गर्म छोड़ देना है, उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, हींग डाल देनी है, फिर ग्रेवी डालकर थोड़ा धीमी आंच पर उसे पका लेना है, फिर दही का पेस्ट डालना है और तब तक तेल अलग ना हो तब तक इसको पकाना है। फिर जो हमारे तले हुए आलू हैं थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर जब तक वो तेल थोड़ा सा अलग होने ना लगे तब तक पकाना है 10-15 मिनट तक। जब आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे तो आपके समझ लीजिए कि कश्मीरी दम आलू जो हैं वो तैयार हैं।
1: तो ये रेसिपी हमारे श्रोताओं ने भेजी थी और हम इन्हें पढ़कर सुनाई, और अगली बार किसी और रेसिपी की बात होगी। और अब घड़ी की ओर देखिए कि अब गाना बजाने का समय है और सुनाते हैं ये गाना, सुनवाते हैं।

0: आर पार फिल्म का गाना था, गीता दत्त की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है।
2: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन, जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखती है वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखती है, जिसमें वो देखती है कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी ज़रूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ये कितनी मात्रा में है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जिंदगी के हर पड़ाव पे जरूरी है, तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की जरूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है, ना कि

0: हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको ज़रूरी है, आपको आपकी पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको ज़रूरी है, और आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरत क्या है।
1: तो ये बताइए कि कैसे समझें ये जो ज़रूरत होती है, एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको कितनी डाइट की ज़रूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषकता की खास तौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो?
0: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके जिंदगी की आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज़ की किस मात्रा में ज़रूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में एक चौथाई हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
1: ऊर्जा भी देगा,
0: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपकी थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज्यादा आपको लेनी जरूरी होती है,
1: वो भी मौसम के हिसाब से,
0: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्जी हर मौसम में मिलती नहीं है, और हम आजकल ज्यादा कर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा एक चौथाई हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग, चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है। अगर आप दूध लेते हो तो दूध, पनीर, इसमें से आ जाता है। और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी, फिश, चिकन, इसमें से आपको मिल जाता है। और जो एक चौथाई हिस्सा है इसमें आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज्यादातर सब्जियों से भर जाता है। ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की जरूरतें क्या हैं, उस पे ये निर्भर करता है।
1: जी, और ये जो आपने बताई सब्जी, दो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ पर एक गाना जरूरी है, कौन सा गाना सुने? हमें तो लगता है कि वो सादा खाना की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ,
0: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने।
1: जवाहरभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं।
2: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

0: लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए।
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज्य रहे, या आप उसे खाने में ना रखें।
0: अच्छा अच्छा ओके।
1: आप ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को जरूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटे छोटे अमाउंट में खाना देना जरूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, आपके बच्चों को जितना जरूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल है, वो होना जरूरी है। दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब दाल पल्सेस जैसे राजमा छोले पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना जरूरी है। ये वही वक्त है जिंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के जमाने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहां पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते हैं कि ये दू ये नहीं दू, ये सही है ये गलत है, इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको ध्यान देखना जरूरी है। वैसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना जरूरी है। जितना बचपन में खाना जरूरी है उतना बुजुर्गों के लिए भी खाना जरूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या फल सब्जियां सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना जरूरी है। और उससे ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
0: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो।
1: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियां। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना जरूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं।
0: जी,
1: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है। जैसे सब्जियां हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा, हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, हम उसको जो
0: पत्ती वो वाली सब्जी,
1: पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है ऐसी वाली, बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा।
0: अच्छा,
1: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी ही मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पर खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में। नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये दो चीजें अलग अलग है।
0: जी, जी।
1: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं। नट्स वो चीज है जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबियत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गए। अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है। वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इश्यू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है, उसके बीज होते हैं पंपकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
0: बढ़ जाता है।
1: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल।
0: जी जी।
1: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे।
0: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
1: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है, जो मौसम की जो सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
0: जी, उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गांव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं।
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सके। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपके सही विटामिंस मिनरल्स आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया थोड़ा सा उल्टी होना है, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहाँ पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही दूध सलाद ये थोड़ा सा खा ले, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं, जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
0: जी, ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खास तौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है?
1: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना जरूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है, और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और महावारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
0: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
1: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है, और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है। मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो उसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए,
0: जी
1: जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज्यादा करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
0: जी बिल्कुल। एक गाना सुने?
1: जी
0: कौन सा?
1: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई सक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
0: सुनते ही ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाती हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को आईबीएस आईबीडी ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट, और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है
0: जी।
1: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
0: अच्छा,
1: दूसरी चीज आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा
0: जी।
1: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है ज्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती
0: जी, ब्लोटिंग होने लगती
1: बहुत ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है। तो आप कि शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है, और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुयम स्थान देके

0: यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में, कम तेल, कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2-2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
0: बहुत ज्यादा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो, इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, बेचैनी ज्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
1: डिप्रेशन
0: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन, एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है। जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितनी विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
1: अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
0: नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई, मुझे हर दिन का एक फल चाहिए। और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
1: जी बिल्कुल। और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं, अमूमन यही होता है, वहाँ पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई, खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
1: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है।
0: बढ़िया,
1: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।
2: चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम का पिया, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौना।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज करना जरूरी नहीं होता। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी।
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग जैसे मैंने कहा, जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसके वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है, वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपकी थाली में कितने रंग है, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे।
0: जी बिल्कुल।
1: आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है, तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी हैं, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं।
0: जी जी जी।
1: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं, हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गर्म मसाले का पानी हो जाता है।
0: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
1: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, हम यहाँ पे 200-300 ग्राम चार लोगों के परिवार के लिए खाते हैं।
0: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके बस मसाला डाल,
1: हाँ, और उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते, आप उसको इम्प्रूव कर सकते, थोड़ा सपोर्ट कर सकते।
0: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है, लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर, लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है, हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा, तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
1: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं, मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग, मगर उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
0: जी जी।
1: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
0: जी बिल्कुल।
1: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहाँ बाहर की खेलकूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स है, बस है, रिक्शा है, बाइक है। तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1000-2000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना जरूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना जरूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना जरूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं। आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
0: जी, एक गाना सुने।
1: जी,
0: कौन सा?
1: आप ही बता दीजिए कोई गाना।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज नहीं है जहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से, तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गरम उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीजें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीजें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आंवला एक चीज है, उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया।
0: करौंदा,
1: तो करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
0: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किसमें होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जितनी हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं, बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
0: जी जी, एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत है?
1: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज कर रहे हैं। इसकी दिक्कत यह है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
0: ज्यादा
1: थाली में ज्यादा डालते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक टेबल सॉल्ट बेस्ट, आपको ना सॉल्ट लाइट की जरूरत है ना आपको काला नमक पिंक नमक सेंधा नमक की जरूरत है।
0: जी, जी।
1: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के, तो आराम से
0: दाल में भी बिल्कुल।
1: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं
0: जी, बिल्कुल। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे
2: FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: ಶಿವನೆ ಗಜರಾಜ್
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अर्चो का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये खड़गवा, रामेश्वरपुर, झींगापारा, पंडोपारा, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये इंदरपुर, फुलवार, छतवा, चिनिया, कनकपुर, रामपुर, पेंडारी, तनवारी, कोटराही, गुरमुटी, लोधी, कोटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी, असकला, दोरना, जरहाडी, रामनगर, फुनगी, पतरापारा, झिरमिटी, लक्ष्मणगढ़, एरन, नवापारा, बेनई, गिरहुल्डी, ललितपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये लोटापानी, मयूर चूंदी, जामचुआ, ढोंगा आंबा, किलकिला, इमली टिकरा, बटुरा कछार, आमा डोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, बोरो, बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 130 है। ये आमापाली, आमगांव, ओंगना, रुपुंगा, पोटिया, धवईडांड, कूड़ेकेला, बंगरसूता, लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये कांसीपानी, जामपानी, साजापानी, चीता खोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 54 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधी बहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये जुनवानी, पड़ी गांव, बरकछार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये कुकरी कोना, गिंडोला, कोठारी, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायली खंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार
3: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
4: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम की 5:05 हुए हैं। सुने कार्यक्रम विवरण शाम में कजल। 5:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे। 5:30 पर लेकर आएंगे युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा युवावस्था में पोषण आहार की आवश्यकता। चर्चा में सुनेंगे साइबर ठगी से रहें सावधान और सुनिएगा पत्र मिला। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 6:20, 7:00, 8:30 पर। रात 10:00 सुनेंगे विविध संगीत। अनुरोध आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर। 7:20 पर हमारे केंद्र से सुनेंगे चौपाल। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा इस मास के पशुपालन कार्य। नसीहत में सुनेंगे मधुमक्खी पालन किसानों के लिए लाभकारी। गैर फिल्म गीत होगा 8:20 पर।
0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 और दोपहर 12:30 डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
6: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 MHz पर। 5:10 हुए हैं। पेश आए गजलों का कार्यक्रम शामी गजल। जगजीत सिंह के स्वर और संगीत निर्देशन में सुनीश गजल को, रचनाकार हैं मेराज फैजाबादी के।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: मंगल भवन मंगल हारी।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: तलत अजीज के स्वर में आप सुन रहे थे गजल को, इब्राहिम अश्क की रचना थी, संगीत तलत अजीज ने ही दिया था। कार्यक्रम में आप सुनिए कातिल शिफाई की रचना को, पिनाज मसानी की आवाज में, संगीत दिया है रघुनाथ सेठ ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे बिनाज मशानी के गायश गजल को। इसके साथ ही गजलों का कार्यक्रम शाम गजल अब समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम ये वफाड़ी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिशा यादव और आप सुन रहे हैं युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद है आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और हमारे आज के युवाणी कार्यक्रम का इंतजार कर रहे होंगे। तो आइए आपका इंतजार खत्म करते हैं और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि कई बार अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, खासकर युवावस्था में जब पढ़ाई, नौकरी या दूसरे कामों के सिलसिले में हमें अक्सर घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में समय बचाने के चक्कर में कभी नाश्ता छूट जाता है, कभी समय पर खाना नहीं खा पाते और जब भूख ज़्यादा लगती है तो बाहर का फास्ट फूड ही सबसे इजी ऑप्शन लगता है। शुरुआत में तो लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यही छोटी छोटी आदतें अगर हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएं तो आगे चलकर हमारे स्वास्थ्य पर गलत असर डाल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी बिजी लाइफ के बीच भी हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें और ऐसा भोजन चुनें जो स्वाद के साथ साथ हमारे शरीर के पोषण संबंधी ज़रूरतों को भी पूरा करे। युवावस्था में हमारी बॉडी तेजी से बदलावों से गुजरती है, इसलिए इस समय उसे सही मात्रा में पोषण मिलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पेट भर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि खाने में अलग अलग पोषक तत्वों का होना भी ज़रूरी है। हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम युक्त भोजन करना चाहिए। इसके लिए हमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये सारे पोषक तत्व हमें हमारे घर के खाने से मिल सकते हैं। पर हमें ज़रूरत है कि हम अपने खाने में दालें, छोले, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, नट्स, सीड्स, दलिया, ओट्स, अनाज, मल्टीग्रेन रोटी यानी गेहूं, चना, बाजरा या ज्वार का आटा मिलाकर रोटी, सब्जियां, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, मौसमी फलों को हम अपने रोज़ के भोजन में शामिल कर सकते हैं। ये हमें आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगे, बस ज़रूरत है कि हम इन्हें अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, युवावस्था एक ऐसा समय है जब बॉडी में कई बदलाव और विकास हो रहे होते हैं। हड्डियों और मांसपेशियों के विकास, ऊर्जा, दिमाग की कार्यक्षमता और शरीर की सामान्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त पोषण चाहिए होता है। इस समय पढ़ाई, काम, खेलकूद और रोजमर्रा की भागदौड़ हमारी बॉडी काफ़ी एक्टिव होती है, जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर हमारे भोजन में ज़रूरी पोषक तत्व कम हो तो थकान, आलस, कमजोरी, एकाग्रता में कमी, बीमारियां या पोषण की कमी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छे भोजन के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है, जैसे रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, पर्याप्त नींद लेना, पर्याप्त पानी पीना, तनाव से दूर रहें, रोजाना व्यायाम करें। दोस्तों, युवावस्था में हम भविष्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखते हैं, इसलिए जितना हो सके

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गीत। अलका और कुमार सानू की आवाज़ में गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। दोस्तों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं आज की चर्चा में। दोस्तों, आज के टाइम पे मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को जितना आसान बनाया है, उतना ही ज़रूरी है कि हम इनके इस्तेमाल में सावधानी भी बरतें, क्योंकि हमारी छोटी सी लापरवाही साइबर ठगी की वजह बन सकती है। साइबर ठगी कई तरीकों से की जाती है। कभी ठग बैंक अधिकारी बनकर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है। कभी KYC अपडेट करने के नाम पर लिंक भेजा जाता है। इसके अलावा फर्जी नौकरी, लोन, ऑनलाइन शॉपिंग, लॉटरी या इनाम का लालच देकर भी लोगों से पैसे ठगे जाते हैं। कई बार ठग किसी रिश्तेदार या परिचित की आवाज़ या प्रोफाइल का इस्तेमाल करके पैसों की मांग करते हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाले अनजान लिंक और संदिग्ध QR कोड भी परेशानी में डाल सकते हैं। दोस्तों, कोई बैंक आपसे फ़ोन पर OTP या कोई गोपनीय विवरण नहीं पूछती और कोई भी पुलिस आपको पैसे की मांग नहीं करती। बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई ऐप डाउनलोड ना करें और ना ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करें। पैसे प्राप्त करने के लिए सामान्यतः UPI पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई आपको जल्दी जल्दी फैसला लेने या आपके किसी अपने की आवाज़ सुनाकर डराने की कोशिश करे, तो हड़बड़ी में फैसला लेने और उनकी बातों में आने से बचें। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी ज़रूरत से ज़्यादा साझा ना करें और मजबूत पासवर्ड के साथ 2-स्तरीय सुरक्षा यानी 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। और अगर गलती से आपके साथ साइबर ठगी हो जाए तो घबराएं नहीं, जल्द से जल्द बैंक या संबंधित वित्तीय संस्था को सूचना दें और तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। किसी भी प्रकार की साइबर फ्रॉड होने पर किसी भी नज़दीकी पुलिस थाने या सीधे साइबर पुलिस के पास FIR दर्ज कराएं और आप इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी सावधानी ही हमें साइबर ठगों से बचा सकती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और साइबर ठगों से बचें। दोस्तों, आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं दिल मांगे मोर फिल्म का ये गीत। सोनू और सुनिधि की आवाज़ों में गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के क्रम की ओर, जिस क्रम का रहता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार और हमें रहता है हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया जानने का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रम पत्र मिला की। आइए देखते हैं आज हमें किन किन श्रोता साथियों के पत्र और ईमेल मिले हैं और उन्होंने हमारे कार्यक्रमों के बारे में क्या कहा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्रम क्रम पत्र मिला। दोस्तों हमें पहला मेल आया है नंदघाट कातल बोर्ड से। मेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री राजपूत, टिकेश्वर और रितु राजपूत। ये अपने मेल में लिखते हैं, 11 मार्च की भक्ति आराधना सुनकर मन भाव विभोर हो गया। सुबह सुबह रामचरितमानस सुनकर मन को बहुत ही सुकून मिला। इसके लिए आकाशवाणी को बधाई। इसी दिन का लोकरंजनी कार्यक्रम बहुत सुंदर पसंद आया। बहुत ही सुंदर सुंदर लोकगीत सुनने को मिले। डिडनेश्वरी यादव दीदी को बधाई। प्रस्तुति सहयोग के लिए रामविलास पटेल और प्रस्तुतकर्ता नीरज प्रभाकर को बधाई। दोस्तों सबसे पहले मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सुबह सुबह भाव से भरे सुंदर गीत सुनने को मिल जाए तो मन आनंदित हो उठता है। हमें अच्छा लगा कि आपको 11 मार्च के दिन भक्ति आराधना

रामचरित मानस सुनकर आप श्रोता आनंदित हुए। आपको इसके साथ ही उसी दिन का लोकरंजनी कार्यक्रम भी पसंद आया। दोस्तों, हम हमेशा ये प्रयास करते हैं आप श्रोताओं के पसंद गीत आपको सुना पाए, और ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको 11 मार्च के सभी लोकरंजनी के सभी गीत पसंद आए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बधाई उस दिन की प्रस्तुतकर्ता डिनेश्वरी जी व प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता तक पहुंचा दी है। दोस्तों, आप श्रोताओं को जानकारी के लिए बता दें कि हमारे केंद्र के वर्तमान कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता रवि आनंद जी हैं। दोस्तों, इसी तरह हमें पत्र भेजते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। दोस्तों, हमें अगला मेल आया है माँ महामाया चौक मेघापारा से। हमें मेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल। ये अपने मेल में लिखते हैं, आकाशवाणी रायगढ़ के सभी कार्यक्रम हमें बेहद पसंद हैं। सभी कार्यक्रम हमें बहुत सुंदर लगा और आनंद से भरा हुआ था। आकाशवाणी रायगढ़ परिवार के सभी उद्घोषक, कंपियर और कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। हम आकाशवाणी रायगढ़ के नए श्रोता हैं, 2 महीने से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको हमारे केंद्र के सभी कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। आपकी ये प्रशंसा हमें और भी अच्छा करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, हमारे पुराने पूरे आकाशवाणी रायगढ़ की पूरी टीम की ओर से प्रशंसा व बधाई के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ पूरे श्रोता जो पुराने समय से जुड़े ही हैं, साथ ही साथ आप जैसे नए श्रोता भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, और हमारा आकाशवाणी रायगढ़ का परिवार और भी बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, हमसे जुड़ने व हमसे इसी तरह मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें मेल भेजते रहें और हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, हमें अगला मेल आया है गांव गणेश धाम परसूली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। हमें पत्र भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मोतीन बाई मानिकपुरी, धनवंतीन बाई और योगिता बाई मानिकपुरी। ये अपने मेल में लिखते हैं, नमस्कार। दोस्तों, आपको भी हमारा नमस्कार। 8 अगस्त 2026 को वनिता विहार सुनाया प्रियंका दीदी ने। इस दिन भारत के स्वतंत्रता दिलाने में महापुरुषों के योगदान बलिदान से हमें स्वतंत्रता मिला। इस संबंध में जानकारी और सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी के साथ क्रम आपका पत्र का गीत सुनाया, हमें बहुत पसंद आया। प्रियंका दीदी को बधाई। दोस्तों, हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपको 8 अगस्त का वनिता विहार कार्यक्रम पसंद आया। दोस्तों, हमारा ये हमेशा से प्रयास होता है कि हम आप तक आवश्यक जानकारी व सूचनाएं पहुंचाते रहें, ताकि आप भविष्य में उनसे लाभ उठा पाएं। साथ ही आपका पत्र भी आपको अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपकी बधाई उस दिन की प्रस्तुतकर्ता प्रियंका जी तक पहुंचा दी है। मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें मेल भेजते रहें। दोस्तों, हमें अगला मेल आया है साल्हेओना जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से। हमें मेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गजानन निषाद, अनुराधा निषाद, आदित्य निषाद और यज्ञेश निषाद। ये अपने मेल में लिखते हैं, सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, आपको भी हमारा नमस्कार। ये आगे अपने मेल में लिखते हैं, आकाशवाणी रायगढ़ द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता पहले से बेहतर होती जा रही है। वर्षों पहले हम रेडियो सेट पर कार्यक्रम सुनते थे और फरमाइशी कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे। बीच में सुनना और पत्र भेजना बंद कर दिया था। अब मोबाइल ऐप के माध्यम से आकाशवाणी रायगढ़ सुन रहे हैं। इन दिनों मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी रायगढ़ की आवाज़ बहुत धीमी सुनाई दे रही है। कृपया आवाज़ की गुणवत्ता में सुधार करने की कृपा करें। दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगा

ये जानकर कि आप हमारे पुराने श्रोता हैं, हम हमेशा ये प्रयास करते रहेंगे कि हम हमारे कार्यक्रमों की गुणवत्ता और भी बेहतर करते रहें और आप श्रोताओं का दिल जीतते रहें। जी हाँ दोस्तों, रेडियो सुनना आज मोबाइल के ज़रिए और भी आसान हो गया है। दोस्तों, कई बार कई टेक्निकल इश्यूज के कारण आवाज़ धीमी सुनाई दे सकती है। अगर कुछ टेक्निकल इशू में सुधार हो पाए तो हम अवश्य करेंगे। दोस्तों, मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें मेल भेजते रहें। क्रम पत्र मिला में बस इतना ही। दोस्तों, आइए सुनते हैं फिल्म दे दनादन का ये गीत, जावेद अली और बंज्योत्सना की आवाज़ों में। गीतकार हैं आशीष पंडित और संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रमों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया हम तक साझा करना चाहते हैं तो हमें पत्र व मेल जरूर भेजें। हमारा पता है क्रम पत्र मिला युवाड़ी प्रभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़। पिन कोड है 496001। दोस्तों, इसी के साथ ही आप हमें हमारे पते पर ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shrotarayagad@gmail.com। सब्जेक्ट में क्रम पत्र मिला जरूर लिखें। दोस्तों, अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। अपनी रेडियो दोस्त ऋषा यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुद्दुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुद्दुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र को 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम विवरण फिल्म

0: संगीत आप सुनेंगे 6:20, 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय रहेगा 7:20 का। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा इस मास के पशुपालन कार्य। नसीहत में सुन सकेंगे मधुमक्खी पालन किसानों के लिए लाभकारी। गैर फिल्मी गीत पेश करेंगे 8:20 पर। रात 10 बजे विविध संगीत आप सुनेंगे। अनुरोध आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। कल सुबह 6:05 पर चिंतन सुन सकेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रस्तुत करेंगे 6:10 पर। कृषि चर्चा का वक्त रहेगा 6:30 का। रामचरितमानस सुबह 6:40 पर आप सुन सकेंगे। देश गान का समय रहेगा 6:50 का। चित्रपट संगीत 7:05 पर लेकर आएंगे। 7:35 पर सुनेंगे झरोखा। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, देश को सशक्त बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। बाजीमांदर 7:45 पर सुनिएगा। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइया आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे 8:30 पर। यहीं से रिले करेंगे 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी सुन सकेंगे 10:30 पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: श्रोताओं, कल शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोर सुनेंगे। जल की प्रसन्न का समय रहेगा 5:10 का। 5:30 पर युवाणी लेकर आएंगे। ज्ञान का दीप जलाएं, समाज को साक्षर बनाएं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, चर्चा में सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भारत का अपना दूरदर्शन दिवस और करियर एडवाइस सुन सकेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी 7:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे विविध संगीत आप सुनेंगे। पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम यादें लेकर आएंगे 10:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 6:20, 7 बजे, 8:30 पर। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, राज्यपाल हा न्यायाधिपति कृष्ण राम महापात्र ल आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 16वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में देवई शपथ। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश में पटवारी के 200 खाली पद ल भरे बर सीधी भर्ती ल दे दे मंजूरी। और बीजापुर कोंडा गांव और सुकमा जिला में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल मन बरामद करी नक्सली डंप। अब समाचार विस्तार ले। राज्यपाल रमेन डेका न्यायाधिपति कृष्ण राम महापात्र ल आज लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के रूप में शपथ दिवैन। एकर पहली कृष्ण राम महापात्र ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज के पद में काम करत रहिन। राज्यपाल ह मुख्य न्यायाधीश श्री महापात्र ल राष्ट्रपति ढार ले जारी मूल वारंट के कापी सौंपिन। श्री महापात्र ह छत्तीसगढ़ के 16वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के संगे संग राज्य सरकार के मंत्री और आने जनप्रतिनिधि मन शामिल हुईन। राज्यपाल रमेन डेका आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फूले कन्या छात्रावास के शुभारंभ करीन। ये मौका में ओमन मेधा एआई और मीडिया शोध केन्द्र के उद्घाटन घलो करीन। शिक्षक और छात्र मल्ला संबोधित करत राज्यपाल कहिन कि आज के दिन विश्वविद्यालय पर बड़ महत्व रखे। सावित्रीबाई फूले के नाव ऊपर कन्या छात्रावास के नामकरण पढ़ैया छात्र मल्ला उखर आदर्श ले प्रेरणा देके मौका देवा थे। उमन कहिन कि विश्वविद्यालय में बनाए गए मेधा एआई और मीडिया शोध केंद्र छात्र मल्ला नवा तकनीकी समझे के संगे संग प्रभावी उपयोग पर तैयार करे में बड़का भूमिका निभाही। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज दयाल घलो शामिल हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू आज रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राखे गए प्रबुद्ध जन सम्मेलन और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संभागीय बैठक में शामिल हुईन। ये मौका में ओमन ओबीसी समाज के एकजुटता और संगठन की मजबूती ऊपर जोर दिन। ओमन कहन कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के करीबन 67 जाति हवय। एकर मन के परम्परा रहन सहन और सांस्कृतिक मूल्य एके हवाई। श्री साहू कहिन कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में सरकार बने के बाद सामाजिक न्याय ल लेके कतकोन बड़का फैसला ले गए है। ओमन कहिन कि संविधान संशोधन के माध्यम ले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ल संवैधानिक दर्जा दे गए है। केंद्र सरकार ह ओबीसी समाज ल सम्मान अधिकार और बौका दे के काम करत है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय जामवाल, वित्त मंत्री ओबी चौधरी, प्रदेश ओबीसी मोर्चा प्रभारी लखन साहू और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू आए रहिन। राज्य सरकार राजस्व और भू अभिलेख विभाग के अंतर्गत आम लोगन मल्ला बड़का राहत देवत भूया मन के सीमांकन के काम ला सरल, पारदर्शी और डिजिटल बना दे है। अब जमीन के मालिक मन ला नापजोक के सीमांकन बन सरकारी दफ्तर के चक्कर कांटे भरनी पड़े। नवा डिजिटल सिस्टम में सीमांकन अर्जी पर लोक सेवा केंद्र और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल या सेवा सेतु के माध्यम ले अर्जी जमा करे जा सकी। ये अर्जी हा सोझे एखर ले जुड़े तहसीलदार के आईडी में ट्रांसफर हो जाही। राजस्व निरीक्षक ढार ले अपन रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करे के नियम घलो करे जाते। नवा व्यवस्था के पूरा काम ऑनलाइन और डिजिटल मैपिंग ले पूरा हो ही। विवाद वाले सीमांकन में ही अर्जी करैला एकाध बार तहसील ऑफिस जाए पर पड़ी। केंद्र सरकार के नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सिटीजन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के कामकाज में छत्तीसगढ़ ला संयुक्त रूप ले पहली स्थान मिले है। छत्तीसगढ़ के संगे संग आंध्र प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पुदुचेरी ला घलो संयुक्त रूप ले पहली जगह मिले है। ये योजना सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मी मन के सुरक्षा के संगे संग साफ सफाई वाले काम में मशीनीकरण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले चलाए जाते। उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस सफलता पर नगरीय निकाय और विभागीय अधिकारी कर्मचारी मल्ला बधाई दे हवे। प्रधानमंत्री काली संझा मुंबई में ग्लोबल फिनटेक पोस्ट GFF के शुभारंभ करी। दुनिया के सबले बड़का और प्रभावशाली सालाना फिनटेक सम्मेलन में एक GFF के ए बार के विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम कनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम फॉर इंक्लूसिव फाइनेंस। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता अउ खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। बीजापुर कोंडागांव और सुकमा जिला में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल मन नक्सली डंप बरामद करे है। बीजापुर जिला में CRPF के जवान मन पीडिया और कुपा गोड़ा के जंगल में नक्सली मंडहार ले लुकाए गए 14 नक्सली डंप बरामद करे है, जेमा 1 नग 303 बोल्ट एक्शन राइफल, 5 नग भरमार राइफल और 1 नग देसी 12 बोर राइफल शामिल है। एकर अलावा ID, डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, वायरलेस सेट, प्लास्टिक और स्टील कंटेनर के संगे संग इलेक्ट्रिक जीनिस और वर्दी बरामद करे गए है। उन्हें सुकमा के चिंतलनार थाना क्षेत्र के चिन्नापोर के गांव के पहाड़ी और जंगली जगह में सुरक्षा बल मन माओवादी मंडहार ले लुकाए गए पुराना डंप बरामद करे है। इति कोंडागांव जिला के पुष्पपाल जगह में घलो जवान मन पिस्टल, 6 वाकी टाकी, बम बनाए में प्रयोग हो या वायर के संगे संग बारूद और विस्फोटक जिनिस बरामद करे है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश में पटवारी के 200 खाली पद ल भरे बर सीधी भर्ती ल मंजूरी दे दे है। राज्य शासन कोती ले जारी आदेश के मुताबिक जिला में मंजूर रिक्त पद ल सेवा भर्ती नियम के मुताबिक करे जाही। पटवारी भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ढार ले जाही। विज्ञापन जारी होने के बाद ऑनलाइन अर्जी के काम मंडल के पोर्टल में शुरू होगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ढार ले स्थगित करे गए 3 विषय के परीक्षा आज ले शुरू हो गए। बांचे 2 विषय के परीक्षा 8 और 9 सितंबर के हो ही। विश्वविद्यालय ढार ले ए बार जम्मू कॉलेज मल्ला ईमेल के माध्यम ले प्रश्न पत्र भेजे जावत है। परीक्षा शुरू होए के थोड़ी देर पहलीच कॉलेज प्रबंधन ला पासवर्ड दे जाते। चीन के मोकी में पाछू 4 सितंबर ले 13 सितंबर तक महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट चला थे। टूर्नामेंट के पहली 2 मैच में भारतीय टीम बढ़िया प्रदर्शन करत जीत दर्ज करे है। टीम में शामिल छत्तीसगढ़ के मधु सिदार और गीता यादव घलो कुल 3 गोल दागिन। ये पहली बार है कि जूनियर टीम में प्रदेश के 2 झीन खिलाड़ी मन खेले के मौका मिले है। अब अप्रे से मौसम के हाल। मौसम विभाग प्रदेश के कतकुन जगह में 9 सितंबर ले वर्षा होने की संभावना जताये है। उन्हें उत्तरी भाग के 1-2 जगह में भारी वर्षा होने के चेतावनी घलो दे गए है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी बतायन कि 10 और 11 सितंबर के बाद छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में घलो बने वर्षा हो सकते। अब थोरकुन समाचार सार मा। मुख्यमंत्री की अगुवाई में 9 सितंबर के बिहनिया 11:30 बजे मंत्रालय में मंत्रिपरिषद के बैठक रखे गए है। कांकेर जिला में 1 कंपनी में निवेश के नाव पर करीबन 500 लोगन मन ले 70 करोड़ रूपया के ठगी करे के मामला आगू आ है। ये मामला में अंतागढ़ पुलिस 2 झीन आरोपी मामला गिरफ्तार करे है। दंतेवाड़ा जिला में शिकार करे भर लगाए गए GI तार के चपेट में आये ले 1 झीन मनखे के मौत हो गए। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ऊपर काली मंझनिया होए सड़क दुर्घटना में फटफटी में बैठे दोनों मनखे के मौत हो गए और 1 झीन मनखे गंभीर रूप से घायल हो गए है। घटना मुंगेली जिला के सरगांव थाना क्षेत्र के है रहे और सुकमा जिला के कोंटा स्थित वजामगुड़ा गांव में इतवार के मझनिया गाज गिरे ले एकर चपेट में आए ले 10 मवेशी के मौत हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। राज्यपाल न्यायाधिपति कृष्णराम महापात्रला आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 16वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में देवें शपथ। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश में पटवारी के 200 खाली पद भरे पर सीधी भर्ती ला दे मंजूरी और बीजापुर कोंडागांव और सुकमा जिला में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल मन बरामद करीन नक्सली डंप। इतने संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। किशोर कुमार चंद्रानी मुखर्जी की आवाजों में आइए सुनते हैं लापरवाह फिल्म के इस गाने को, जिसे लिखा है रमेश पंत ने, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
4: लता मंगेशकर की आवाज में जमीन आसमान फिल्म के गाने को आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था अनजान ने, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया था। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रविंद्र जैन के संगीत और रचना में आवाजें हेमलता शैलेंद्र सिंह के, अखियों के झरोखे से, फिल्म के इस नगमे को।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: नीरज के लिखे गीत को संगीत में प्रिया था शंकर जयकिशन ने, मोहम्मद रफी की मधुर आवाज में आप सुन रहे थे कन्यादान फिल्म के इस गाने को। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM बैंड पर। 6:45 होने वाले हैं कुछ पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नागपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: किधर है?
2: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
3: RBI कहता है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
11: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
10: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
11: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
10: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
11: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
9: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
12: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल रमन डेका ने न्यायाधिपति कृष्णराम महापात्र को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी। बीजापुर, कोंडागांव और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप बरामद किया। और प्रदेश के कई हिस्सों में 9 सितम्बर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल रमन डेका ने न्यायाधिपति कृष्णराम महापात्र को आज लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके पूर्व कृष्णराम महापात्र ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज के पद पर कार्यरत थे। राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश श्री महापात्र को राष्ट्रपति द्वारा जारी मूल वारंट की प्रति सौंपी। श्री महापात्र छत्तीसगढ़ के 16वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित राज्य सरकार के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF का शुभारंभ करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली सालाना फिनटेक सम्मेलनों में से एक GFF का इस बार का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एंजेटिक AI टोकनाइजेशन क्वांटम ट्रस्टेड कनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम्स फॉर इंक्लूसिव फाइनेंस। प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार की नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पुदुचेरी भी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। ये योजना सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों की सुरक्षा तथा स्वच्छता कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। राज्यपाल रमन डेका ने आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मेधा AI और मीडिया शोध केंद्र का उद्घाटन भी किया। शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व रखता है। सावित्रीबाई फुले के नाम पर कन्या छात्रावास का नामकरण छात्राओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगा। राज्यपाल ने कहा कि विद्यालय में स्थापित मेधा AI और मीडिया शोध केंद्र विद्यार्थियों को नई तकनीकों को समझने तथा उनके जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज दयाल भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू आज रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संभागीय बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने OBC समाज की एकजुटता, सामाजिक सशक्तिकरण और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। श्री साहू ने कहा कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की लगभग 67 जातियां हैं। इन सबकी परंपराएं, रहन सहन और सांस्कृतिक मूल्य एक ही हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी एकजुटता को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बनाना है। श्री साहू ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सामाजिक न्याय को लेकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने OBC समाज को सम्मान, अधिकार और अवसर देने का कार्य किया है। श्री साहू ने OBC समाज के लोगों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय जामवाल, वित्त मंत्री OP चौधरी, प्रदेश OBC मोर्चा प्रभारी लखन साहू और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू मौजूद थे। राज्य सरकार ने राजस्व और भू अभिलेख विभाग के अंतर्गत आम जनता को बड़ी राहत देते हुए जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। अब जमीन मालिकों को नापजोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोक सेवा केंद्र और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल या सेवा सेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की ID में ट्रांसफर हो जाएंगे। राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान भी किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल मैपिंग से पूरी होगी। आवेदक को तहसील कार्यालय केवल तभी जाना पड़ेगा जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी या अन्य पक्ष द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए। अगर मामला अविवादित है तो आवेदक को एक बार भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
13: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिलों में स्वीकृत रिक्त पदों पर सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। पटवारी भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। विज्ञापन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंडल के पोर्टल पर शुरू होगी। बीजापुर, कोंडागांव और सुकमा जिले में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप बरामद किया है। बीजापुर जिले में सीआरपीएफ के जवानों ने पीडिया और कुप्पागुड़ा क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपा कर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए हैं। इनमें एक नग 303 बोल्ट एक्शन राइफल, 5 नग भरमार राइफल और 1 नग देशी 12 बोर राइफल शामिल है। इसके अलावा आईडी, डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर, वायरलेस सेट, प्लास्टिक और स्टील कंटेनर समेत इलेक्ट्रिक सामग्री और वर्दी बरामद की गई है। वहीं सुकमा के चिंतलनार थाना क्षेत्र के चिन्ना बोड़केल गांव के पहाड़ी और जंगल इलाके में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखा गया पुराना डंप बरामद किया है। इधर कोंडागांव जिले के पुष्पपाल क्षेत्र में भी जवानों ने पिस्टल, 6 वॉकी टॉकी, बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला वायर, बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा स्थगित की गई 3 विषयों की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। शेष 2 विषयों की परीक्षाएं 8 और 9 सितंबर को भी होंगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस बार सभी कॉलेजों को ईमेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं। परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही कॉलेज प्रबंधन को पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। चीन के मोकी में बीते 4 सितंबर से 13 सितंबर तक महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले 2 मैचों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। टीम में शामिल छत्तीसगढ़ की मधु सिदार और गीता यादव ने भी कुल 3 गोल दागे हैं। ये पहली बार है कि जूनियर टीम में प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला है। रायपुर प्रेस क्लब में महिला पत्रकारों के लिए तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। तीज महोत्सव में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा और विधायक भावना बोहरा भी विशेष रूप से शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने के बाद पारंपरिक छत्तीसगढ़ी अंदाज में रैंप वॉक भी किया। इस अवसर पर श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि तीज छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और महिलाओं के उल्लास से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में 9 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि 10 और 11 सितंबर के बाद दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
14: 9 सितंबर से पूरा प्रदेश में वर्षा का गतिविधि में बढ़ोतरी होने की संभावना है और उत्तर छत्तीसगढ़ में 9 सितंबर से 1-2 स्थानों पर मध्य से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है। 10-11 सितंबर के बाद दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी वर्षा का गतिविधि ज्यादा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की तो संभावना नहीं है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने इंदिरा मार्केट स्थित एक दुकान में दबिश देकर 280 नकली घड़ियां और फास्ट ट्रैक के 275 नकली टैग बरामद किए हैं। इस मामले में दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया है। कांकेर जिले में कंपनी में निवेश के नाम पर करीब 500 लोगों से लगभग 70 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में अंतागढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा जिले में शिकार के लिए लगाए गए अवैध GI तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर कल दोपहर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र की है। और सुकमा जिले के कोंटा स्थित वजामगुड़ा गांव में कल दोपहर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 मवेशियों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल रमन डेका ने न्यायाधिपति कृष्ण राम महापात्र को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी। बीजापुर, कोंडागांव और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप बरामद किया और प्रदेश के कई हिस्सों में 9 सितम्बर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
15: बोल बोल के थक गया।
16: क्या हुआ?
15: नया किडबैग चाहिए।
16: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
15: करेक्ट।
16: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
15: चले
16: ले आ गया नया किडबैग।
17: RBI कहता है
18: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
19: FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 7 बजे हैं, सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम कर्तव्य फिल्म के इस नगमे को। आइए सुनते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की मधुर आवाजों में। संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन, गीत के बोल रानी मलिक के हैं।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: दिलीप ताहिर की रचना को आप सुन रहे थे। पुलिस और मुजरिम फिल्म के गाने में अपनी आवाज़ दी थी मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने, संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए क्रांतिवीर फिल्म के गाने को। आवाजें हैं कुमार सानू अलका याग्निक की, संगीत संयोजन आनंद मिलिंद का है, समीर ने गीत को लिखा है।

कुमार सानू, अलका याग्निक के गायश गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 MHz पर। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनिया जमो संगी संगवारी मल्ला आप मन के संगवारी राम विलास पटेल के राम राम जय जुहार। संगवारी देखा खेती किसानी के काम चलत रही थे और खेती किसानी के काम के संगे संग हमार चौपाल के बैठकी में हमन चर्चा करथन खेती किसानी उद्यानिकी बागवानी पशुपालन नाना प्रकार के गोट बात करथन और हमार ये कार्यक्रम में यही सब विषय जुड़े रहे थे। तो संगवारी देखा सावन चले गए भादों के महीना चला थे। अब भादों के महीना में तीजा और गणेश चतुर्थी नवाखाई और नाना प्रकार के तीज त्यौहार मनाथन ये सब तो मनाथन और मनाते रहो लेकिन संगे संग हमन गाय गरवा रखे हमन पशुपालन करत हमन तो अहूला तो भी ध्यान रखना पड़ी कि ये महीना हमन काका बूता काम ला करबो। देखा संगवारी हो सितंबर के महीना जोन होते यह वर्षा के अब छड़ाती हुई यानी वर्षा कम होते और वर्षा के कमती होए के कारण से और मच्छर मक्खी ये सब बढ़े लागते यानी कि पूर्ण रूप से देखा जाए संगवारी हो तो परिवर्तन काल हो ही ये महीना के आखिरी समय हर और ठंडा के आती और वर्षा के जाती ये संधि काल जो होते ये संधि काल में लोग लैका मल्ला गाय गरुआ मल्ला हर एक वर्ग के जो मनखे है आदमी है पशु है जीव जंतु है सब बोला प्रभावित करते। तो ऐसने में हमला ये मास में का काम करना है ये मास में हमला काम करना है आवास और स्वच्छता के प्रबंधन करना पड़ी। सबले पहले हमारे जो कोठा हवे ओकर हमला बचाव करना पड़ी नमी से और नमी हर अगर ज़्यादा रही तो संगवारी हो हमला नियमित रूप से का करना पड़ी सफाई करके नियमित रूप से चूना के छिड़काव करना पड़ी ताकि परजीवी या जो कीटाणु है वो मनहर नष्ट हो जाए। परजीवी के नियंत्रण पर जैसे मक्खी है मच्छर है किलनी है ये मतलब बचाए खातिर हमन घर में नीम तेल अगर रखे रहन तो ओला भी अगर हमन स्प्रे करबो तो ओकर से भी राहत मिलते। अगर एयर भी नहीं होते तो सापर मैथ्रीन के दवा भी आते कीटनाशक ओला भी आप मन छिड़काव करके एक निश्चित अनुपात में डाल करके परजीवी मल्ला नष्ट कर सकता हो। पोषण आहार के ऊपर भी ध्यान देना पड़ी का होते ये महीना जो वर्षा काल रहे थे वर्षा काल में जो हरा चारा रहते वो बढ़िया उल्होए रहते पनपे रहते बढ़े रहते तो हरा चारा ला हमन खिलाथन तो हरा चारा ला एक निश्चित अनुपात में सूखा और हरा दोनों ला मिला के खिलाना पड़ी। अगर हमन का कहबो अगर एक ही प्रकार के न मतलब ज़्यादा हरा चारा ला खिला देबो तो वह पोके लागी पतला दस्त करा लागी तो एक बार हमला एक निश्चित अनुपात में खिलाना है नहीं तो का होते पेट फूला अफरा के समस्या होते तो अफरा के समस्या जन हो कर पर निश्चित अनुपात में दी और एक निश्चित अंतराल में दी। अवैया समय में दिसंबर में नवंबर में हरा चारा की दिक्कत हो सका थे एक बार ज्वार बाजरा मक्का नेपियर बरसीम जई ये मन के आप मन बुआई कर सका था और ये मन के प्रबंधन अवैया समय पर कर सका था। संग में जैसे देखा जाए तो खनिज मिश्रण दुधारू पशु ला काय संगी हो रोजाना 30 ले 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 20 ले 30 ग्राम नमक ला खिलाना हुई इकल ले रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ते। तो संगी हो ये भी हमला ध्यान में रखना है पानी ला साफ सुथरा पानी पी लई है तब ठीक रही नहीं तो कहा होते गाय गर वाला चराए बढ़ जाते हैं तो जहां तहां के पानी ले पीते हैं तो ओकर ले भी संक्रमण हर बाढ़ते तो ये चीज ला भी आप मन ला ध्यान में रखना है। संग में स्वास्थ्य और टीकाकरण टीकाकरण के विशेष अभियान भी विभाग के डहाले चलाए जाते और समय समय में चलत रहते तो हमला ओमे का करना है संगवारी हो टीकाकरण कामला करना है करवाना है का है पशुधन हमर महत्वपूर्ण धन होते और ओकर टीकाकरण में अगर हमन अवहेलना करत हैं नज़रअंदाज करत हैं तो समस्या हो सकत है। लंपी स्किन डिजीज जो संगवारी हो संक्रामक रोग हावे एकर अलावा HS है BQ है ET है LSD है ऐसे कई प्रकार के जो संक्रमण फैलाते हैं ओमन के नियंत्रण पर भेड़ बकरी है या सुकर प्रजाति है या गाय गरुआ है ते मन में लगाना बहुत जरूरी है। तो एकर बार आप मन लगता के पशुपालन विभाग के डॉक्टर मन से चिकित्सक मन से संपर्क कराओ अगर नहीं लगे है तो लगवा लेवा ताकि आप मन के पशु मस्त रहे दुरुस्त रहे तंदुरुस्त रहे। संग में आप मतलब कहना चाहबो संगवारी हो कि पशु अगर स्वस्थ रही तो बढ़िया उत्पादन भी हमला भविष्य में मिल ही तो ये चीज ला आप मतलब ध्यान में रखना है। संग में किसान मन के आमदनी ला बढ़ाए बर भारत सरकार की ओर से भी बहुत सारा स्कीम योजना चलते और योजना स्कीम के संगे संग प्रशिक्षण भी दिए जाते। तो संगी हो आप मन देखा कि ऐसे में हमन कैसे लाभ ले सकत हन मधुमक्खी पालन ले। तो मधुमक्खी पालन किसान मन पर का बर लाभकारी हावे इला तो आप मन जानते छाव कि मधुमक्खी जोन डाहर रही तो परागण के क्रिया ला सक्रिय करते और मधुमक्खी जोन होते संगवारी हो आज एकर पालन किए जाते और गांव घर में कुछ प्रजाति के रहते जोन मन काटते हैं जोन मन रुख राही मा अपन के घारा बनाते हैं और ओमन कभू कभार काटते भी। लेकिन आजकल मधुमक्खी पालन पर बात किए जाए तो अच्छा प्रजाति के मधुमक्खी आगे से जिला आप मन पालन कर सकता हो और पालन करके अतिरिक्त आय के जरिया बना सकता काबर कि मधुमक्खी पालन करके जो शहद रहते ओकर मांग हमेशा बाजार में ऊंचा रहते। एकर ले मोम प्रोपोलिस रायल जैली विनेम जैसे उत्पादन करके हमन महंगा दाम में बेच सकत हन। फसल के पैदावार में वृद्धि भी होते का होते अगर फसल रहते आसपास में सरसों है मूंगफली है तिलहन दलहन यानी जो फूल वाला फसल है ओमन में ज्यादा एकर परागण की क्रिया सक्रिय होते तेज होते। एकर ले हमर जो उत्पादन रहते संगवारी हो और बढ़िया होते कहे के मतलब ओमा हमन का करथन गांव घर में ज्यादा उत्पादन लेहे पर विटामिन के दवाई देते हैं तो संगवारी हो ये सब देहे के दरकार नहीं पड़े एमा फूल बढ़िया से टिकते और फर भी बनते। तो इला भी हमला ध्यान में रखना है और कम लागत और कम जगह में आप मन ये कामला कर सकता हो काबर कर सकता हो काबर की एकर पर कोई उपजाऊ जमीन के दरकार नहीं पड़े। आप मन जहां भी चाहिए बंजर भूइया है या खेत के मेड़ पार है तिहा भी आप मन एला लगा करके का कर सकता कम लागत में ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकता। तो संगी कम मेहनत और ज्यादा लाभ पर अगर हमन देखो तो यह बहुत बढ़िया साधन है और खेती के समाने में ज्यादा देख रेख प्रबंधन के दरकार भी नहीं पड़े रोजाना निरीक्षण के दरकार नहीं पड़े तो यह भी हमारे बार लाभकारी हावे। तो मधुमक्खी पालन बर सरकार भी सब्सिडी अनुदान समय समय में देते तो एकर बर आप मन राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन और ग्रामोद्योग जो खादी और ग्राम उद्योग रहते आयोग रहते वहाँ और वहाँ से आप मन लोन या ऋण ले सकता हो। एकर बर प्रशिक्षण उपकरण और बक्सा भी अनुदान भी दिए अनुदान में दिए जाते बक्सा ये सब चीज और प्रशिक्षण भी निःशुल्क दिए जाते। तो आप मन बर विशेष सहायता बर प्रशिक्षण बर कृषि विज्ञान केंद्र है या उद्यान विभाग है वहां ले संपर्क करके आप मन 3-7 दिन की जो अवधि रहते वो मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर सका था और एपिस इंडिका एपिस मेलिफेरा ये मन के आप मन चयन करके मधुमक्खी पालन में आमदनी ला बढ़ा सका था। शुरुआत आप मन ला अगर डर लागत है तो 5-10 बक्सा ले कराओ ताकि संगी हो आप मन के जो काम है काज है ये में का हो संगवारी हो धीरे से करिया तो आप मन ज्यादा दिक्कत नहीं हो और धीरे धीरे करके आप मन इला बढ़ा सका था और बढ़ा करके आप मन व्यवसाय में आगे बढ़ सकता। तो संगी हो ये तो इससे जानकारी कि आप मन एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा के प्रजाति के चयन करिया जो कि उपयुक्त हावे। संगी हो आज के प्रश्न हावे मधुमक्खी पालन ले का लाभ होते मधुमक्खी पालन का बर जरूरी है तो ये चीज ला आप मन बतैया संगवारी हो। आज के हमारे कृषक प्रश्न मंच में प्रश्न हावे मधुमक्खी पालन ले का लाभ हावे। तो संगी हो ये से आप मन बर जानकारी अब चला कार्यक्रम में सुनबो एक ठन भेंटवार्ता ला भेंटवार्ता के विषय हावे संगवारी हो कि कैसे भेड़ पालन करके व्यवसायिक स्तर में आर्थिक समृद्धि लावत हैं और किसान हावे विद्याधर यादव और इमन हावे देवगांव सरिया के पास होते तो वो किसान से वो भेड़ पालक से हमार जो बातचीत हुई से आवाज सुनी। संगवारी हो राम राम जय जोहार किसान और भेंटवार्ता के विशेष क्रम में आज हमन पहुंचे हन सरिया क्षेत्र के एक विशेष गांव हावे देवगांव और सरिया मुख्यालय ले लगभग 6 किलोमीटर के दूरिया में बसे गांव हावे देवगांव और देवगांव के गांव जो है यहां खास विशेषता ये है कि यहां खेती किसानी के संग में पशुपालन बकरी पालन मुर्गी पालन नाना प्रकार के काम काज चलते और ऐसने में पशुपालन विभाग के डहर से भी विशेष सहायता सहयोग भी मिलते किसान मल्ला और वही क्रम में
1: किसान भेड़ पालन करत हे और ऐसे भेड़ पालक से आज हमन भेंट करत हन जोन मन सालाना 2 लाख रुपया सालाना भेड़ पालन करके प्राप्त करते हैं। तो सबले पहली किसान ला हमर डाले राम राम जय जुहार।
2: जय जुहार।
1: का नाम है जी आपके?
2: मुन्ना विद्याधर यादव।
1: विद्याधर यादव जी, और आप मन भेड़ पालन के काम लग कब ले करा था?
2: ओ तो 35 साल हो गया।
1: और कतका करा था अभी?
2: पहले हम देसी भेड़ रख रहे, रुकवा नस्ल रख रहे हैं, अब आंध्रा लाने हैदराबाद ले समझो।
1: अच्छा अच्छा, तो ये भेड़ पालन के काम कैसे लागत है?
2: भेड़ के पालन हर देखो तो एक आदमी है तो कर नहीं सके घर के, जब तक आदमी सहयोग नहीं करी, जब मतलब घर में खाना देना चारा देना सब चीज होते, चरान तो जात है बढ़िया बात है, लेकिन कहीं चरत है नहीं चरत है तो घर में भी मतलब खुआ लागत है समझो।
1: अच्छा अच्छा, तो ये बता यादव जी की जो भेड़ पालन में अभी कतका भेड़ रखे आप मन?
2: भेड़ मात्र में 5 ठन है, बाकी करही भेड़ी करके 65 ठन है।
1: 65 ठन है। और इमन के जैसे पालन पोषण के बात आते और एक प्रबंधन के बात आते, तो सबसे हमने मतलब जानना चाहबो कि जो आप मन नस्ल पाले है वो नस्ल के का विशेषता है?
2: ये नस्ल की ये विशेषता है कि देसी भेड़ी ले इमन मतलब देसी भेड़ी 50 है तो ये 1 रुपया जैसे डबल है समझा यार।
1: अच्छा अच्छा,
2: वजन सजन ऊंचाई हाइट फाइट सब में ये डबल है समझा।
1: तो भाव कैसे जाते है?
2: भाव जैसे देसी भेड़ी 6,000 बिठे देला, 12,000 15,000 20,000 जितना भी तुमने अच्छा से खाना खुआ चारा खुआ
1: अच्छा
2: पॉलिसी दिखी उतनी ग्राहक एक और बार आते हैं लेबर।
1: तो एक साल में कतका बन जाते क्या मतलब?
2: देखो तो आते है तो 2 लाख भी बेचा था, लेकिन 50,000 भी हमें खाना खर्चा भी देवे लागते, जैसे मक्का कोतरा ले लानथन, चक्की ले चोकर लानथन, या दाना भी खवाथन, पैरा कुटी गेहूं कुटी में सान सान खवाथन, मतलब चारागाह व्यवस्था से नहीं हो, घर में खाना खुआ पर भी लागते वाला।
1: तो जैसे यादव जी ये जो आप मन पालन कर रहे थे, मन के शुरुआत ले बता कि दिनचर्या कैसे रहते, ये मतलब कैसे बिहान ले लेके संझा तक पूरा प्रक्रिया कैसे रहते तेला बतावा?
2: ये मन ला देखो सुबह ढील थन तो गर्मी दिन में जब बहुत जल्दी सुबह ढीले वाला लागते, धूप के टेम्परेचर पड़ते तो ये मन के जैसा देखिया तो जहाँ ते मन के रवा रवानी खाली मास रहे, हाँ। तो सूर्य के प्रकाश है जिसने पड़ते कि मन के छाव में बैठ जाते हैं।
1: अच्छा,
2: तो
1: अच्छा।
2: गर्मी दिन में सुबह ढीले वाला लागते, मतलब जल्दी चारा के ला के 8 बजे अंदर कर दो समझो।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: और इसने मतलब जैसे मौसम आजकल वर्षा दिन में जैसे शीत बरसते तो शीत जिसने छाड़ते उसके बाद चारा चारा में बैठते हैं, नहीं तो बैठे रही समझो ये मन।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ।
1: जैसे आप मन के भेड़ मल्ला अभी देखा था,
2: हाँ।
1: बैठे हैं,
2: हाँ।
1: कहाँ पर बैठे हैं मन अभी?
2: एमन कल बहुत खाना खाई है, फिर खेत ला पेला दे रहे हैं, वहाँ सावा के रही तो किसान बोलिस कि आप मन जाओ मेरे खेत में पेला देना बोले।
1: अच्छा।
2: वहाँ चरायन बहुत चरायन फार्म के भी चरायन तहाँ घर में खाना खुआन,
1: हाँ।
2: तो अब एमन 12-1 बजे कम से कम उठी और उठ के चढ़ी समझे।
1: अच्छा, कल खा डारी
2: पोखरात है।
1: अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है। तो किसान के खेत में वाला घुसाए है पेलाए है तो एक प्रकार से बियासी भी होगी?
2: ऐसी भी होगी सेवा में, बहुत सामा रही तो आदमी है कतक दवाई छींचे पेला दल खवा दा कही तो सब सामा वाला खा दिन, धान भी खाई है लेकिन उतना ज्यादा नहीं
1: धान तो अभी फिर बाढ़ जाए अभी ओकर दिन अभी बाचे है। अच्छा, तो एक जैसे आप चराए के बात करते हैं, मतलब खाना दाना कैसे कब बेरा देता कौन
2: जैसे अभी जैसे दो अभी जाबो तो 12 बजे भी जैसे कभी कभी दिन भर राख देते नहीं तो कभी कभी दोपहर 12 बजे रहते घर में खाना देते समझो, गेहूँ कुटी और दाना मिक्स करके वाला सब खवा दे समझो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो और फिर कृमि रहित करे
2: साल भर में 2 बार पीपीआर के, हाँ 2 बार इंजेक्शन लगते हैं, पीपीआर तो अनिवार्य है,
1: पीपीआर के टीका कर,
2: हाँ वो ठंडा के पहली लगाए बड़े नहीं तो नहीं लगाते भेड़ी मतलब बचा नहीं सको समझो।
1: अच्छा अच्छा, तो जैसे इनके लक्षण दिखते रोग बीमारी के या अमन बीमार पड़ते तो क्या सिम्टम या क्या लक्षण दिखाई देते
2: हैं? मन देखो मन के बीमारी के जब नीचरिन मतलब बीमारी है।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ। और जैसे मुंह में लार थी फीस वो पीपीआर के संक्रमण दिखते, और जैसे ज्यादा लेटरिंग करते हैं पतला लेटरिंग करते तो हाईटेक के कृमि के इंजेक्शन लगा था समझाओ में।
1: अच्छा,
2: तो साल भर में 2 बार हाईटेक लगते, एक रुकू उसको ओकर बाद वो क्या कहते हैं खुरहा चपका के भी लगा था, पीपीआर के लगा था, कहीं लेटरिंग ज्यादा हो सूजी भी लगाए लगते, कहीं जर वर भी आते बुखार भी जाते सूजी लगाए लगते देख रेख, मतलब ये हर जैसे आदमी बायलर जैसे करे बड़े तीसने वगैरह सेवा करे बड़े लगते सर ये सब चीज।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है कि ये में जतका देख रेख प्रबंधन करे अतका आप मन के व्यवसाय में उन्नति हुई
2: देखो कहे ना आप मतलब कि 6 देसी बढ़े 6,000 बेचत है 12,000-15,000 बेचिया तो इसने चल के चारा के बैठार दी है कल तो नहीं हो समझो।
1: अच्छा,
2: घर में कोठा बनाए हैं कोन कोन प्लास्टिक के खाना बर प्लास्टिक के ढोल काट काट के अच्छा से बढ़िया।
1: अच्छा,
2: देह नाने में तो बदबू ही ना समझो।
1: हाँ,
2: धो देते साफ कर देते हमें खुआथन समझो।
1: अच्छा, तो पशुपालन विभाग ले सहायता मिलते?
2: पशुपालन भी अभी तक ले तो कोई नहीं मिली से, लेकिन देवो कहा दे साहब मन लेकिन ऐसे ऐसे करके।
1: अच्छा अच्छा, तो भेड़ पालन बढ़िया लाभ के साधन है और ये काम में बढ़िया इनकम भी होते और देखा जाए आज के दौर में तो बहुत अच्छा रोजगार के सृजन भी होते में काम बूता ज्यादा करे बन नहीं लागत।
2: जेकर घर में जगह है गाँव में पर्याप्त चारा है घर वाला ज्यादा जनसंख्या है मेंटेनेंस नहीं होते ओकर बर ये बहुत सुविधा है।
1: अच्छा,
2: बाकी एक आदमी में निर्भर नहीं हुए घर भर भी सब सहयोग करें तो आराम के साथ।
1: अच्छा, काकरो बनिहारी भूथी करे बजाय
2: मतलब नहीं है, जैसे साल भर में 5-10 एकड़ खेती भी करा था तो में खर्चा है आई में कुछ खर्चा नहीं है खाली खाना खुआओ चरान जा समझो।
1: अच्छा अच्छा,
2: समझा
1: था। तो विद्याधर यादव जी आप मन के व्यवसाय लगाओ आगू बढ़ाना चाहता हूँ संख्या बढ़ाना चाहता कैसे चाहता
2: अभी तो

0: जिस पर पानी नहीं गिरेगा, कि सुविधा नहीं होगा, कि तो ये क्या है ना, ये इसको बीमारी लक्षण सच पकड़ लेंगे, बढ़िया समय समय में टीका लगवाएंगे तो लाभदायक है ये सब चीज।
1: चलो बहुत बढ़िया जानकारी साझा कर विद्याधर यादव जी, आप मन के क्षेत्र आये, आप मन के भेड़ ल देखे और आप मन से गोट बात करें तो बहुत बढ़िया लागिस, हमारे संग उठियाव सुघर जानकारी साझा करे, एक बार आप मन बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, जय जवान,
0: जय जवान।
2: तो संगवारियों देखा भेड़ पालक विद्याधर यादव जी रही ने कैसे उन बताते हैं कि भेड़ पालन करके कैसे व्यवसाय के स्तर में आमदनी ले बढ़ाते हैं। और सही बात है संगवारियों, जानकारी और ज्ञान के संगे संग अगर बढ़िया से देख रेख प्रबंधन करके टीकाकरण करके अगर काम ल करिया तो आप मतलब भेड़ पालन से बिल्कुल ही लाभ हो ही। तो विद्याधर यादव की जुबानी सुनत रहे ओमन के कहानी। अब चल कार्यक्रम में हमन आगू बढ़बो और सुनबो एक ठन सुघर एकन के गीत ला, घासीदास मानिकपुरी और संगवारी के गाय गीत आवे चांदी के मुंदरी चिन्हारी कर ले।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: तो संगवारी हो, संदेश के पहली बढ़िया गीत ल सुनेन कार्यक्रम में ये गीत संगीत आप मन बहुत बढ़िया लागे हो ही, प्रयास रथे जानकारी भी दन और आप मन के मनोरंजन भी हो, तो ऐसने क्रम ये सुघर गीत ला आप मन ल सुनायन कहा। तो संगी हो देखा, खेती किसानी में अगर बात करथन तो बेहतर तकनीक और योजना जब तक हम नी अपनाबो तो संगवारी हो हमला जो चाहतन हमन लाभ वो लाभ हर नहीं मिल पाए। तो आप मन बेहतर तकनीक ला अपनावा और बढ़िया से इनकम ला बढ़ावा। और दिन होते आज सोमवार है, अब दिन का कार्यक्रम होते, का क्रम होते, क्रम होते चिट्ठी मिलिस। तो आप मन के मन पसंद कार्यक्रम जोन की चिट्ठी पत्री और ईमेल ले सजे रही थे चिट्ठी मिलिस क्रम हर। तो चिट्ठी मिलिस में आप जमो के स्वागत है, नमन है, वंदन है, आप जमो मायारू मल्ला हाथ जोड़ के वंदन है। तो ये क्रम मा हमन शुरू करथन और पहला जो ईमेल आई से तेला हमन शामिल करथन। ये ईमेल हर आई से संगवारी हो, बिलाईगढ़ ले रोशन लाल देवांगन, रायगढ़ ले गेंद लाल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव और नरेंद्र कुमार तिवारी हमन नियमित श्रोता हवे। ये मन कहते हैं आकाशवाणी रायगढ़ सुनिए जम्मू श्रोता संगवारी और पूरा स्टाफ ला राम राम जय जुहार। केंद्र निर्देशक रवि आनंद जिला और आकाशवाणी रायगढ़ के पूरा टीम ला दिल ले हृदय ले प्रणाम और धन्यवाद कहा थे। तो आप मन ला हम मन कहा थन धन्यवाद कहा थन, नमस्कार कहा थन, जय जुहार कहा थन। आप मन ला भी हमन धन्यवाद ज्ञापित कर थन आप मन के ईमेल पर। आप मन लिखा था वह आघू राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अवसर में 6 सितंबर के संझा नेत्र सहायक अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदेली रायगढ़ के चंद्रशेखर साहू जिले रामविलास पटेल के बीच जो बातचीत हो रही से नेत्रदान के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी रही से। सच कहिबो तो संगवारी हो ऐसने लागिस जैसने ज्ञान के फिल्म के पहली सीन है दिल ल छूगे। तो संगवारी हो आंखी देल ने हमन दुनिया ला देखथन और ये हर हमर जीवन जाए के बाद मृत्यु के बाद और राख हो जाते। तो ऐसने बेरा में मृत्यु के बाद अगर हम नेत्रदान ला करथन तो दूसर मनखे के दुनिया ला हमन उजियारा कर सकथन, दूसर पर रोशनी ला सकथन, ये बात ला कहते हैं। तो सही बात है संगवारी, यही बात ला हमन कार्यक्रम के माध्यम से परोसत रहन भी और राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भी चला थे 25 अगस्त ले 8 सितंबर के माझा मा मनाए जाते। तो वही क्रम में चंद्रशेखर साहू जी जानकारी ला साझा करत रीने। आप मन लिखे माटी के गीत मा माटी के महक रीना साहू हर बगरात रही से छत्तीसगढ़ी माटी के गीत मा एकदम बढ़िया सुगर समाल बांधे रीने और रेडियो हर संगवारी ऐसे लागत जैसे गाँव के चौपाल मा हमन बैठे हन। श्रोता मन के चिट्ठी और ईमेल ला फरमाइश ला रीना साहू दीदी हर बढ़िया अपन के मीठ मीठ आवाज मा सुनाइस, बहुत सुघर लागिस और ये जो कार्यक्रम है क्रम है यार ऐसे ही सजे रहे बने रहे और बढ़िया ऐसे रीना साहू जी हमर तक माटी के गीत में हमला गीत और संगीत परोसत रहन ये कहते हैं। तो माटी के गीत के प्रस्तुत करता रहने हमर जो रीना साहू जी ओमन तक आप मन के बधाई हर पहुंचा थे रोशन जी। संग में आप मन लिखे हमर लोकगीत में जो रहते खेती किसानी माया प्रीत के ददरिया के सुआ के कर्मा के भोजली के बहुत सारा गीत संगीत रही थे। तो ऐसने ही क्रम में 4 सितंबर के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुमित्रा पटेल जी शानदार प्रस्तुति लेके आ रही ने खेती किसानी ले जुड़े जानकारी के संग में चिट्ठी और मेल ला बहुत एकन शामिल करीन और कृष्ण जन्माष्टमी ले जुड़े गीत और संगीत ला हमर तक परोसिन, बहुत ही सुघर लागिस और आनंदमय रही से। तो सुमित्रा पटेल तक भी आप मन के शुभकामना बधाई हर पहुंचा थे। संग में आप मन कहा था कि रजनी पटेल जी के शानदार प्रस्तुति श्रोता मन संग फोन में बातचीत बहुत ही सराहनीय रही से, बहुत बढ़िया लागिस कहा थे और संग में कहा थे हेलो संगवारी में शानदार वापसी रही से शशि पटेल जी के बहुते दिन के बाद उमन के आगमन हो रही से बहुत ही पसंदीदा कलाकार अपन सुपर हिट फिल्म के नया सोला लेके ऐसे ऐसे लागत रही से कहते हैं और फोन में श्रोता मन संग आत्मीय जो बातचीत रही से हाल चाल और मन पसंद छत्तीसगढ़ी गीत सब कुछ एकदम हृदय ला छूगीस कहते हैं। श्रोता मन से फोन लगाइन और शशि पटेल जी कहीं अपन के आवाज में बोलाओ संगवारी का हाल है तो हमर मन गदगद हो गए खुशी के घंटी बाजे लागिस कहते हैं। तो शशि पटेल जी तक आप मन के बातचीत पहुंचा थे आप मन की शुभकामना पहुंचा थे प्रयास रहते हमर संगवारी कि हमन आप मन से मीट मीट गोट करी और मीट मीट सुघर गीत ला परोसी तो यही क्रम में हमन परोसेन भी आगू लिखा था आप मन हेलो संगवारी में हमर मयारू मितान रामविलास पटेल जी लेके आ रही ने और इमन के प्रस्तुति हमेशा जैसने एकदम लाजवाब रही से सुपरहिट रही से संग में श्रोता मन से बातचीत बढ़िया हालचाल पूछ परख और मनपसंद छत्तीसगढ़ी गीत पूरा कार्यक्रम में ऐसा लागिस जैसे रेडियो के स्टूडियो ले नहीं बल्कि अपन के घर के अंगना में संगवारी से हमर बातचीत हो थे। तो श्रोता मन के फरमाइश कलाकार मन के आवाज और आकाशवाणी रायगढ़ के अपनापन ये तीनों हर अगर मिल जाते तो कार्यक्रम शानदार मस्त दमदार बन जाते यादगार महफिल के जैसे सज जाते। तो आकाशवाणी रायगढ़ ला ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुति पर बधाई कहते हैं। ऐसने चिमन लिखा थे माटी के महक छत्तीसगढ़ी बोली की मिठास और गीत संगीत के जो सुर है वो श्रोता मन तक पहुंचत रहे आकाशवाणी रायगढ़ के हमर जो जतका भी श्रोता संगवारी हैं वो मन तक ऐसे ही गीत संगीत ला आप मन बगरात रह परोसत रह कहा था। संग में आप मन लिखा था संगवारी मन के संग हर पल आप मन मन के रंग जो है संगवारी हो बने रहे आप मन ला जमो झन ला राम राम जय जुहार और ऐसे ही आकाशवाणी रायगढ़ हमर संग जुड़े रहे। तो संगियो आप मन भी हमर संग जुड़े रहो और हमर संग माया दुलार ऐसे बगरात रह आप मन के समीक्षा ला हमर डहर पठोत रह ये ला लिखे रही ने बिलई गल्ले रोशन लाल देवांगन रायगढ़ ले गेंदलाल श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और नरेंद्र कुमार तिवारी। तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद ईमेल के रद्दा हमर डहर चिट्ठी मिलिस में भेजे पर आप मन आगू हमर जो श्रोता संगवारी हैं ये मन हमें साहेब बंदगी कृष्ण जन्मोत्सव के बधाई कहते हैं यानी कि ये मन संगवारी हो 4 सितंबर के कार्यक्रम में सुने रही तेकर बारे में लिखे ने ये श्रोता हमें गांव गणेश धाम परसोली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी ये मन भी हमारे नियमित श्रोता हमें ये मन कहते हैं 4 सितंबर के चौपाल लेके आ रही से सुमित्रा पटेल दीदी बहुत सुघर खेती किसानी के जानकारी ले बताइस और हमर लोकगीत में कृष्ण भजन ला सुनाइस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में ये भक्तिमय जो कार्यक्रम रही से बहुत बढ़िया लागिस आकाशवाणी रायगढ़ ला एकर बर हृदय ले धन्यवाद आप जमो झन ला राम राम जय जोहार। तो गणेश धाम परसूली के हमर श्रोता जितेंद्र दास जी आपो मन लभी हमर डाले धन्यवाद कि सुघर आप मन ईमेल लिखिया और हमर नियमित श्रोता हवा और हर एक कार्यक्रम में आप मन के ईमेल हमर डहर अवत रहते चाहे माटी के गीत हो चाहे ईमेल वाला वनिता बिहार के क्रम हो चाहे चिट्ठी मिलिस के हो लोक रंजनी हो हमर लोक गीत हो हर एक कार्यक्रम में आप मन के समीक्षा आप मन के पत्र ईमेल आवत रही थे आप मन पत्र ईमेल के माध्यम से जो ये भी चीज ले पहुंचा था पठो था एक बार धन्यवाद आगू संगवारी ईमेल ऐसे हमर नियमित श्रोता हवे चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र और रौनक सेन एमन बहुते दिन के बाद हमर डहर माया दुलार से ईमेल ला हमर डहर पठोइन है एमन लिखत है सबले पहली अवैया जो तिहार है तीजा पूरा और गणेश चतुर्थी पर्व के हार्दिक बधाई और अभिनंदन और स्वागत कहते हैं। तो संगी आपो मन ला भी हमर डहले अवैया तीज त्यौहार के गणेश चतुर्थी के पूरा के शुभकामना संग मां आप मन लिखा था ये जो शुभकामना है हमर सेन परिवार के डहले आप जम्मो झन झोंक लेहू कहते हैं भुलाहू झन तो नहीं भुलाते हैं हमन झोंक डाले न अग्रिम रूप से आपो मन ला भी हमर डहले शुभकामना प्रेषित करत हन आप मन लिखा था हमर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर ले 85 किलोमीटर के दूरिया दुर्ग ले 80 किलोमीटर के दूरिया राजनंदगांव ले 72 किलोमीटर के दूरिया और कवर्धा ले 42 किलोमीटर के दूरिया यानी कि ये सबों के बीचों बीच में बसे हावे हमर गांव गंडई पंडरिया। देखा संगवारी हो हमन नाम जरूर शामिल करथन लेथन कि हमारे श्रोता हमें गंडई पंडरिया ले कि मन बिलाई गल ले कि मन गणेश धाम परसोली ले कि मन मेघापारा ले कि मन और अलग जगह ले भेजी ने लेकिन ये मन स्पष्ट रूप से लिख दी ने कि अतकी दूरिया अतकी बीच में हमारे गांव और हावे गंडई पंडरिया। जी हाँ संझा बिहनिया मझनिया बेरा कुबेरा माँ गूंजत रहे थे आकाशवाणी रायगढ़ के आनी बानी के गोड बात यानी संझा ले लेके बिहनिया बिहनिया ले लेके मझनिया बझनिया ले लेके बेरा वो बेरा कहते हैं, जतका जहन मन लागे चलते च रही थे कहते हैं। और आनी बानी के गोट बात संग सुंदर सुंदर गीत ला आकाशवाणी रायगढ़ के माध्यम से हमर तक बगरत रही थे, पहुंचत रहे थे, अमरत रही थे। यही क्रम में मीट मीट बोली के बोलैया हमर मायारू बहनी और भैया मन, यही क्रम में हमर छोटे बहनी जेकर एक शब्द में माया के अतिरिक्त धार बहावत रही थे, जेला माया लागा के कहथन सुमित्रा बहनी, जेकर मुखारबिन ले हमन सोमवार के चिट्ठी मिलिस कार्यक्रम और शुक्रवार के हमन लोकगीत कार्यक्रम ला मन लगा के सुनें। इमन कहते हैं कि 4 सितंबर के और ओकर पहली जो चिट्ठी मिलिस क्रम हो रही से उमा सुमित्रा पटेल जी ले सुनिन, उमन कहते हैं और हृदय में समा गए। और यही क्रम में कोयली का सुघर बोली के तान छेड़त मंगलवार के हेलो संगी कार्यक्रम ला हमर बीच में परोसिस रेणुका नोनी है, बहुत सुघर प्रस्तुति रही से आत्मा तृप्त हो गए। संगवारी देखा बहुत बढ़िया बात कहे, आत्मा तृप्त हो गए, हमू मन तृप्त हो जाता जब आप मन ऐसे सुगर सुगर गोड बात लिखता और ऐसे अमृत वाणी लिख के भेजता तो हमारे प्रस्तुतकर्ता मन भी झूम उड़ते हैं। रजनी बहनी के लोक रंजनी कार्यक्रम और लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम, शशि बहनी के स्वर धरमा हैलो संगवारी कार्यक्रम के संगमा हैलो संगीला सुनें और माटी के गीतमा रीना साहू के सुघर प्रस्तुति, आहा सुघर आनंदमय प्रस्तुति हमर हृदय मा समागे, अंग अंग मा समागे, भैया झन पूछा अति सुंदर मनमोहक अति आनंद सुघर आनंदमय प्रस्तुति खातिर जमो कार्यक्रम के जमो प्रस्तुतकर्ता मायारू बहनी संगी जौहरिया मल्ला और हमर खास हमर सहयोगी राम विलास पटेल जिला और आकाशवाणी बिलासपुर ले पधारे हमर कार्यक्रम प्रमुख भाई रवि आनंद जिला अंतस ले माया भरे बहुत बहुत धन्यवाद देवथन परोसथन अमर लेव भुलाहू झन पुनः धन्यवाद कहते हैं। तो पवन सेन जी गंडई पंडेरिया ले चांदनी चौक ले आप मन हमर डहार ईमेल करे और सुघर सुघर बात लिखे, एक बार हमन आप मन धन्यवाद कहतन। हमर प्रयास रथे हरेक प्रस्तुतकर्ता के हमर हरेक संगी जहोरिया के कि हमन अच्छा से अच्छा कार्यक्रम ला आप मन तक बगरान पहुँचान परोसन और अच्छा आनंद आए, हमरो भी यही प्रयास रहते। लेकिन कभू कभार का होते बहुत सारा ईमेल रहते या पत्र रही थे तो ओमा का होते बहुते श्रोता संगवारी मन के पत्र कभू शामिल भी नहीं हो पाए। तो हमन जम्मो श्रोता संगवारी मन ला कहना चाहबो कि अगर आप मन के पत्र शामिल नहीं होते तो नाराज झन हो, आगू पाछू करके जरूर शामिल होते। कभू कभार होते कि हमर छाटर छाटर में भी एती ओती हो जाते या पढ़त पढ़त में सलट जाते, तो संगवारी हो ऐसे होते तो एला आप मन नज़रअंदाज करहू, हमन कहबो कि आप मन की ईमेल पत्र जरूर शामिल हुई, लगातार नियमित रूप से भेजत रहो। हमर हर एक श्रोता से निवेदन है कि आप मन अपन के माया दुलार ला ईमेल और पत्र के माध्यम से हमर तक साझा करत रहो। आगू लिखत है चिट्ठी मिलिस क्रम में हमर संगवारी हैं, ये मन हमें माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमीले राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल, पूरा पटेल परिवार कहते हैं राम राम जय जुहार जी। तो आपो मल्ला राम राम जय जुहार। हमन कहते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम ले कार्यक्रम ला सुनथन और हैदराबाद तेलंगाना में सुनथन, तो बहुत बढ़िया बात है। आजकल संचार के तकनीक आगे से आप मन वेब्स ओटीटी के माध्यम से भी सुन सकते हो, एप्स के माध्यम से भी सुन सकते हो और सुनता हो, सुनत रहो और लिखत रहो। आगू लिखत हो 30 अगस्त दिन रविवार कार्यक्रम चौपाल में हमारे बीच में प्रस्तुत करें परम मित्र श्री राम विलास पटेल जी, सफल प्रस्तुति पर बधाई

31 अगस्त के चिट्ठी मिली इस कार्यक्रम सोमवार के प्रस्तुत करें सुमित्रा देवी पटेल जी, एकर बर भी कोटि कोटि बधाई। 2 सितंबर मंगलवार के हेलो संगवारी प्रस्तुत करें रेणुका प्रधान जी, एकर बर भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 सितंबर के मन लिखा थे। 2 सितंबर के लोक रंजनी प्रस्तुत करें रजनी पटेल जी, अहो बर बधाई और धन्यवाद साधुवाद कहते हैं। 3 सितंबर के हेलो संगी ले प्रस्तुत करें शशि पटेल जी, बहुत सुघर प्रस्तुति रही से बहुत बहुत धन्यवाद एकरो बर कहते हैं। संग मा 4 सितंबर दिन शुक्रवार के लोकगीत के प्रस्तुति में सुमित्रा देवी जी सुनाइन बढ़िया बढ़िया गीत, हृदय ले माया भरे धन्यवाद कोटि कोटि बधाई। और 5 सितंबर दिन शनिवार के कार्यक्रम बाजे मादर अच्छा लागी, जतका जन के नाम लिखे है ओमन तक कार्यक्रम के माध्यम से शुभकामना बधाई आप मन के पहुंचा थे। संग में आप मन लिखा था आकाशवाणी रायगढ़ के सबो कार्यक्रम हमार पर बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी रही थे। समय समय में गीत संगीत रोचक जानकारी कृषि चर्चा किसान वाणी चिंतन सबो कार्यक्रम हमार जीवन भर लाभदायक होते। रेडियो ले मिले वाला जानकारी हमला समय समय में हमार पर काम आते। एकर बर आकाशवाणी रायगढ़ के सबो उद्घोषक उद्घोषिका कंपेयर अधिकारी साथी संगी जहरिया सबोला बधाई और अवैया तिहार मन के तीजा पूरा गणेश चतुर्थी के बोरा बोरा बधाई और शुभकामना कहते हैं। तो हमरो डहाले संगवारी ट्रैक्टर ट्रैक्टर बधाई आप उमला झौघा टुकना सबो मा हमन फरिया के देवथन बधाई झोंक लेहू। और संग माला लिखे रिने माँ महामाया चौक मेघा पारा ले राम कुशल पटेल संतोषी पटेल दीपक पटेल और मन के पूरा संगवारी मन। तो संगवारी आप मन ईमेल लिखा एकर बर धन्यवाद। चिट्ठी मिलिस के क्रम में आगू ईमेल आई से यर हावे लिखत कौन है भाई ये लिखत है जी संगवारी मन हमर धमनी राजीम ले सम्मेलाल धीवर मुन्नी धीवर गोविंद धीवर ममता धीवर कुणाल धीवर के संग में इवांस धीवर ये मन कहते हैं जय जुहार। जय जुहार जी, हेलो संगी लोक रंजनी माटी के गीत कार्यक्रम के आनंद खेत खारमा किसानी करत करत एला सुने के अलग ही मजा आवे। सहीज बात है संगवारी, पहली मोबाइल फोन मन हर नहीं रही से तो रेडियो वाला खेत डोली पार में लेके जाए अपन के संग में रखे रहें और सुनत रहें। रथिया के बेरा हो सबो जन एक ठौर में जोड़िया के मिलजुल के सुने खटिया में पड़े रहे खटिया में सुते रहें और सुनत रहें। बड़ा आनंद रही से पहली के दिन हर नदाज जाते आजकल मोबाइल एप्स के माध्यम से सुनाई दे थे। आजकल बहुत अच्छा तकनीक आ गई से जेकर माध्यम से आप मन कन्हो भी ठौर में आप मन सुन सकता देश विदेश में भी मोबाइल एप्स के माध्यम से भी सुन सकता हो। यही बात लेमन कहा थे श्रोता मन से बातचीत ओमन के विचार सुने ले बड़ा आनंद आते और बढ़िया प्रस्तुति रही थे एकर पर भी धन्यवाद कहते हैं। रेणुका प्रधान जी रजनी पटेल जी रीना साहू जी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद आप मन एक क्रम ला प्रस्तुत कर रहा एकर पर कहते हैं। तो धमनी राजीम के श्रोता सम्मेलाल धीवर जी आप मन ये सब वो जो लिखे है जेकर नाम भी आप मन लिखा था रेणुका प्रधान है रजनी पटेल है रीना साहू है ओमन तक कार्यक्रम के माध्यम से आप मन के बधाई पहुंचाते और आप मन ईमेल के डहर हमार डहर पहुंचावा आप मन के माया भरे ये चिट्ठी मिलिस क्रम में एकर बर धन्यवाद। आगू ईमेल आई से करही बदले पुरुषोत्तम निर्मल भवानी सिंघालिया गित्तू सिंघालिया हिमांशु सिंघालिया के ये मन लिखा थे छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा थे छत्तीसगढ़ के कण कणमा गीत और संगीत के स्वर लहरी गूंज थे। सरगुजा के सुरम में वादी हो या बस्तर के घना जंगल लोक संस्कृति के अनमोल श्रृंखला देखे पर मिलते। सुआ दधरिया कर्मा भरथरी पंडवानी चंदैनी बांस गीत खेल गीत सादरी गीत हल्बी जगार गीत सरदुल गीत गुंडी गीत नाना प्रकार के संगियों ये गीत संगीत हमला जीवंत बनाते हमला जोड़े रखते हमला समझे पर मिलते कर माध्यम से। पुराना जो गीत संगीत है लोक गीत है ओमा पुराना समय के पहली बेरा के का खाए पिए के रिसे का पिन्हे ओढ़े के चीज रही से का रही से वो सब ला वो गीत संगीत में सजाए जाते और ओकर माध्यम से हमन पुरखा के चीज मतलब पहली के चीज मतलब जानथन समझथन परखथन। तो वास्तव में हमार लोक संस्कृति में मिठास है माटी के महक है और छत्तीसगढ़ में ये माटी के महक ला हमन बगरा पर हमन प्रयास करथन और लोक रंजनी माटी के गीत हमार लोकगीत हैलो संगी हैलो संगवारी ला लेके आथन।
इही क्रम में कहा थे 1 सितंबर के हेलो संगी कार्यक्रम ला रेणुका प्रधान जी लेके आईस, बढ़िया सीधा फोन में संवाद हुईस और बढ़िया मन पसंद गीत ला सुने बर मिलिस, एकर बर बधाई और शुभकामना। 2 सितंबर के लोक रंजनी कार्यक्रम में रजनी पटेल जी अपन के बहुत ही मधुर वाणी में प्रस्तुत करिन, लोक रंजनी ला ईमेल और पत्र ला बहुत बढ़िया अंदाज में पढ़िन, शामिल करिन, सराहनीय रही से कार्यक्रम, धन्यवाद। 3 सितंबर के मासिक कार्यक्रम माटी के गीत ला लेके आ रही ने रीना साहू जी, अहोमन भी बढ़िया गीत और संगीत ला सुनाइन और बहुत ही आनंद प्रिय रही से, कर्ण प्रिय रही से और मनमोहक रही से। तो अतका सुघर ईमेल ला लिखी ने करही बदले पुरुषोत्तम निर्मल और उमन के संगवारी मन, आप मन ये डहार में ईमेल पहुंचावा भेजाओ, एकर बर जतका भी आज के हमर ईमेल करता संगी संगवारी हावा जमोला हमन धन्यवाद कहतन। और कार्यक्रम हमर जो चौपाल रथे जिमा क्रम रहते चिट्ठी मिलिस यहाँ ले हमन विदा लेथन और सुनथन सुघर एकन के लोक गीतला तोर मन कैसे लागे राजा, विदुषी ममता चंद्राकर के स्वरमा।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: तो संगवारी हो तोर मन कैसे लागे राजा, बहुत सुघर गीत रही से, बहुत अपन के समय में बहुत प्रचलित गीत रही से, और वही प्रचलित गीत ला आज हम पुनः जीवंत ये कार्यक्रम के माध्यम से

0: करे हन, आप मोला सुरता दिला हन और पुराना दिन ले सुरता करा हन और ये गीत के आज चयन करे हन। तो कार्यक्रम में हमारा एक ठन और भेंट वार्ता है, हरी राम पटेल जी हैं चार भाटा के, एमन से धान और करेला की खेती में कैसे एमन काम करते हैं एकर विषय में मोर बातचीत हुई से, आवाज सुनबो फिर आओ सुघर गीत ला आप मोला परोसबो।
1: संगवारी हो राम राम जय जुहार। भेंट वार्ता के विशेष अंश में आज हमारे बीच में प्रगतिशील किसान उपस्थित हैं, उनसे हम बातचीत करबो। किसान भाई ऐसे हमें हाँ कि वर्षा काल और जो गर्मी के समय रहते हैं वो दोनों समय में धान की खेती करते हैं, संगे संग सब्जी भाजी के उत्पादन करते हैं। तो युवा किसान है, उनसे जानबो कि खेती किसानी के काम कैसे लाभ के साधन बनाते हैं। सबले पहले किसान भाई ला राम राम जय जुहार।
2: राम राम जी जय जुहार।
1: आप मन के परिचय बताइए।
2: मैं हरिराम पटेल चार भाटा आमापाली से।
1: हाँ हाँ, तो हरिराम पटेल जी बता उम्र कद का हो गए?
2: उम्र 43 साल हो गई।
1: और खेती किसानी के काम लग कब ले करा था?
2: ओ 18-20 साल हो गए।
1: कैसे लागत थे खेती किसानी काम?
2: आप खेती किसानी वाला हमारे काम है जी, सब दिन बढ़िया लागते हैं हमारा, वही काम ला करत हूँ।
1: और का फसल ले था आप मन? वार्षिक रूप से देखा जाए तो फसल कैसे रहते आप मन के?
2: फसल बढ़िया रहते जी, मीडियम साइज के, नहीं हो ना हाई क्वालिटी की, नहीं हो बढ़िया कमाधन अपन हिसाब से।
1: अच्छा अच्छा।
2: वर्षा काल में धान है, मिर्चा है।
1: हाँ हाँ।
2: और सब्जी में खेक्सा हो जाते, करेला हो जाते।
1: अच्छा अच्छा, माने ये सब ला लेता। और गर्मी के समय में, रबी समय में?
2: रबी समय में धान कमाथन और साथ में मूंगफली भी कमाता थन, मूंग भी कमाता थन।
1: अच्छा अच्छा, तो ये जो खेती किसानी के काम है में जैसे वर्षा काल में बात करते हैं। हाँ। तो अभी धान की स्थिति जो है फसल के, अभी कौन सी स्थिति में?
2: कंसा निकले के चालू हो जी पेड़ मन।
1: अच्छा अच्छा, कंसा निकलते तो विशेष तौर से कहते हैं कि खाद वाद विशेष ध्यान रखना चाहिए कहते हैं।
2: हाँ, देहन यूरिया देहन आधा बोरा, डीएपी देहन आधा बोरा और साथ में जैम भी देथन जी।
1: अच्छा, तो जैसे ये आप मन कर खेती कर था, तो ये बताइए कि खेती किसानी में शुरुआत कैसे करता, धान के फसल ले के पहले कैसे तैयारी करता खेत की?
2: पहले तो खेत में पानी बोर से डालथन, चाहे ऊपर से जुन गिरते टीमें होते।
1: हाँ,
2: अगर बाद में चिकला करथन जी।
1: हाँ हाँ,
2: चिकला करके सकथन सब खेत ला, तो अगर बाद में धान की बीजा ला फूलो जाते, घर में भी फूलो थन, तालाब में भी फूलो थन पाकिट पाकिट।
1: अच्छा, का किस्म के धान ले था?
2: धान तो स्वर्णाज का माथन जी।
1: अच्छा अच्छा,
2: अगर बाद में अंकुर आते, अगर बाद में वाला खेत में जाके फिर बुआई करथन।
1: अच्छा, तो खेत में बुआई करता तो हमें कुछ सावधानी अपनाना पड़ते है?
2: हाँ, खेत में पानी नहीं मरना चाहिए। और जैसे कि छोटे छोटे 2-3 दिन में बंद भी आ जाते, घास नहीं उगे के दवाई भी डालथन।
1: अच्छा,
2: बालू में डालथन और स्प्रे में भी छिड़काव कर देथन।
1: अच्छा, और उप जाते तेकर नियंत्रण कैसे करते?
2: उप जाते तिला फिर 20-25 दिन में डालथन जी घास मारे के।
1: अच्छा अच्छा, और ये जो खेती है में जैसे आप मन रोपाई करता या बुआई करता है लेही पद्धति जो भी पद्धति से, ये में खरपतवार नियंत्रण कर देवा, ओकर बाद का करना पड़ते?
2: अगर बाद में चालथन जी, जो खुला खुला जगह रहते में फिर।
1: अच्छा,
2: पेड़ मल डालथन।
1: अच्छा, जहाँ के ला मूसवा खादे रहते, चिड़ई खादे रहते, तेला चाले बलाक
2: थे? हाँ जी, चाले बलाक थे।
1: अच्छा, ये सब ला प्रक्रिया ला करता, उकर बाद खाद कौन कौन बेरा रहते जिला देना पड़ते, विशेष तौर से कौन कौन समय बहुत ही बढ़िया रहते, उत्तम रहते?
2: हाँ, ये समय है तो बहुत उत्तम बढ़िया वाला है जी। ये में कंसा लेते पेड़ मल्ला, ये में तो डीएपी और यूरिया और जैम लाई में देना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा, कुल मिला के पैंत देना पड़ता खाद वाद?
2: हमारे यहाँ 3-4 लाख जाते जी।
1: अच्छा, डलवा लेते एक बार?
2: हाँ, डलवा लेते नौकरे बार।
1: और जून खेत में जैसे आप मन मूंगफली उड़ीद मूंग लेते में कम लागत?
2: 3 इंच में हो जाते जी।
1: अच्छा, तो औसत रूप से देखा जाए तो इसमें और 5.5 लगते या का लगते?
2: 5.5 मौसम हिसाब से रहते जी।
1: अच्छा, तो कर कैसे नियंत्रण करता?
2: अगर बार आते दवाई छिड़कथन जी खेत में।
1: अच्छा अच्छा, ओकर बार तो ये कहते हैं कि यूरिया ज्यादा झन डालिया कहते हैं?
2: यूरिया तो कम डालत रहथन जी, लेकिन मौसम हिसाब से जैसे गर्मी ज्यादा हो जाते, पानी ज्यादा हो जाते, तभी भी होते जी सड़न गलन है।
1: अच्छा, तो शुरुआत में ओकर देना स्प्रे करना बहुत जरूरी है?
2: जरूरी है जी।
1: पोटास भी डालते?
2: पोटास भी डालते।
1: अच्छा, पोटास डालते तो क्या काम करते वहाँ?
2: वही पोटास है तो नियंत्रण करके रखते जी, पेड़ ला कड़वा करके।
1: अच्छा अच्छा, कीड़ा मकोड़ा मन की आसानी ले साए ले वाला चाप नहीं पाए, खा नहीं पाए, काट नहीं पाए का तो?
2: पेड़ कड़वा रहते ना जी।
1: अच्छा अच्छा, और बात जैसे खेती किसानी के संग में करेला के बात करते हैं, तो करेला कैसे लगा है?
2: करेला बड़े वाला है?
1: बड़े वाला है।
2: हाँ, 10-15 डिसमिल में है।
1: अच्छा अच्छा,
2: बहुत अच्छा फल थे जी। वो में जैसे कि हमारे तरफ बेंद्रा का थे, बोला बेंद्रा हर कोई नुकसान नहीं करे, कीड़ा भी लगते तो बहुत कम लगते, हमें हल्का हल्का दवाई छिड़के वो लगते।
1: मैंने कीड़ा मकोड़ा भी अतका वो मैं नहीं हुए कहा तो
2: नहीं हुई
1: कांवर की और करू रहे कड़वा रहे तो वाला कीड़ा खाए नहीं कहा जाता काटे नहीं कहा तो
2: बढ़िया फसल है जी करेला की सब्जी है।
1: हाँ हाँ तो ये देखा जाए तो करेला हर कतका दिन के तक उत्पादन देते
2: ढाई तीन महीना जाते जी
1: ढाई तीन महीना उत्पादन देते
2: जी, जी।
1: और इमें ज्यादा रोग बीमारी नहीं लगे
2: नहीं लगे
1: खाद वाद कैसे करते हैं देव
2: खाद देव लागते जी थोड़े थोड़े वो
1: अच्छा हल्का फुल्का देव
2: हल्का फुल्का बुंदा मन मन देव लागते जी
1: और पानी में तो पोमटी पान ये समस्या आत हुई तो कर का करता
2: वही खाली कीटनाशक और विटामिन दे रहे नहीं लगे जी फफूंद नाशक भी डाल दो दवा ला
1: एंटीबायोटिक के काम करते वार तो पान चौड़ा चौड़ा होते कर संक्राए नहीं और जैसे बात करो तो हम धान में एक चीज भूल गए रहन की उत्पादन कैसे हो जाते है एकड़ पाछू
2: हाँ 25-30 क्विंटल के हिसाब से हो जाते जी
1: 25-30 क्विंटल
2: हाँ।
1: तो बहुत बढ़िया कीमत भी मिला थे कहा तो
2: हाँ ले जाते जी बढ़िया अच्छा। कीमत में
1: बढ़िया बात है धान के अलावा आप मन करेला की खेती सब्जी भाजी की खेती करा था वास्तव में किसान एक ही फसल के ऊपर निर्भर रही तो अगर आमदनी अतका नहीं हो और साइड बिजनेस भी होना चाहिए अंत में क्या कहना चाहिए किसान भाई मन
2: सबला साइड बिजनेस भी करना चाहिए जो भी हो सके जेकर से जिसने बने कमाना चाहिए एक ही फसल में निर्भर रहना चाहिए
1: मतलब फसल चक्रण भी करें और मिश्रित खेती भी करें अदल बदल के भी करें और दो तीन प्रकार के फसल नहीं तो एक न एक में मतलब फायदा जरूर मिली
2: हाँ जी, एक
1: वैसे,
2: में।
1: वैसे देखा जाए तो धान के खेती बढ़िया होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहा जाते
2: हाँ जी।
1: तो उत्पादन बहुत बढ़िया होते और किसान मन के उन्नति समृद्धि होते चलो बहुत बढ़िया बात है कि आप मन हमारे संग गोट बात करें जानकारी साझा करें एक बहुत बहुत धन्यवाद राम राम जय जोहार
2: जय जोहार किसान मला राम राम।
0: तो संगवारियों सुने ना भी किसान के क्रम में हरिराम पटेल से जो गोट बात हो रही से वास्तव में संगवारियों खेती किसानी लाभ के साधन बना थे लेकिन वही बात है पहली जो बात कह रहे वही बात ला कही वो कि तकनीक अपनावा नवाचार अपनावा प्रबंधन करिया तभी चाप मला लाभ होही। तो संगी हो ये तुरी से भेंटवार्ता अब चला कार्यक्रम में एक ठन और सुघर गीत ला सुनी

0: तो संगवारी हो देखा जाहों काली धुरिया, ये गीत सुनत रहन घासीदास मानिकपुरी और सुभाषिनी छत्तर के स्वर में। बढ़िया गीत रही से हमर प्रयास वही रहते सुगर सुगर गीत ल परोसन संग में जानकारी ल भी आप मन तक परोसन। तो गोबर ल झन जलावा, गोबर गैस के तकनीक ला अपनावा, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये चीज है प्रचलन में हवे। पहले संगवारी हो गाँव घर में गाय गरवा मन ल चराय पर ले जाए, खेरखा डांड कहें खेरखा ठोके और गाय गरुआ मल्ला मझनिया के बेरा या एक निश्चित समय में एक जगह में मल्ला एकत्रित करके रखें, फिर वहां से गोबर करें और गोबर है सूखा जाए तो संगवारी हो का करें वो कंडा के खाना बनाए मा या पनपुरवा रोटी बनाए मा या अलग अलग काम में उपयोग में लाएं। तो एकर से ईंधन मिलत रही से, लेकिन वैज्ञानिक मन वाला शोध कर दिन कि अगर और सूखा नहीं पाते तो अपन घर में अगर अपन गाय पाले हवा, बैला पाले हवा, भैंस पाले हवा, तो ओकर जो गोबर होते ओला आप मन कैसे तकनीकी के माध्यम से गैस में तब्दील कर सकत है, बिजली बना सकत है, एकर बारे में सोचिन और गोबर गैस तकनीकर आइस। एकर ले मुफत में ईंधन मिला थे, बढ़िया जैविक खाद मिला थे, स्लैरी जोन निकलते ओकर रबड़ी जोन रहते वर बढ़िया रहते, हमार वातावरण पर पर्यावरण पर भी स्वस्थ और अच्छा हवे, काबर की धुआं जो निकलते धुआं मुक्त रहे थे संगवारी हो। और पहली का रही थे गांव घर में का करें, पहली रांधे ना तो खापरा छानी में धुआं हर निसरे गुंगवात रहे, तो समझ जान कि उमन आगी लबारी ना, तो ऐसने करके ओकर घर आगी मांगे बढ़ जाए। पहली वो काड़ी माचिस वो सब अतका ज्यादा नहीं रही से आगी ले जाए अपन के आखा बखा जहां से मिल जाए। तो संगवारी हो गोबर गैस के तकनीक ला अपनावा, एकर बर सहायता भी अनुदान भी दिए जाते, तो एकर से आप मन जुड़ाओ। संग में राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह चला थे, तो पोषण आहार लेवा और स्वस्थ रह मस्त रह। अगर जीवन में कुछ करना है, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर जीवित हवा नहीं कर पाता तो भी आप मन मरे के बाद कर सकता हो, का कर सकता हो, जिंदा हवा तो एक ठन घोषणा पत्र भर देवा, का के अंगदान के भर देवा या नेत्रदान के भर देवा। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चलत है, तो नेत्रदान के प्रण करो और दूसर के जीवन में उजियारा लाए के प्रयास करो। मृत्यु के बाद जो दान होते हैं नेत्रदान, आप मन ये करके दूसर के जीवन में उजियारा ला सका था। संग में आप मन हम कहना चाहबो कि धूम्रपान के परहेज करा, और धूम्रपान बहुत ही भयावह हावे, जोन की धूम्रपान करते ओकर पर भी हानिकारक है और जो नहीं करे ओकरो पर भी, धुआं से वहाँ इफेक्ट करते संगवारी और दुष्प्रभाव करते। तो ये सब चीज़ ला आप मन ध्यान में रख करके धूम्रपान के आदि जोन हावत ओला त्यागा और स्वस्थ और मस्त जीवन ला जिया और महुल देवा कार्यक्रम ले जाए के अनुमति। तो आप मन के संगवारी रामविलास पटेल ला देव विदा, राम राम जय जुहार।
1: किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात के 8:20 हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत का। मनोज मौर्य और प्रीति की आवाजों में सुनिए इस गाने को, जिसे लिखा है प्रदीप पंडित ने, संगीत है आर के निराला के।

पूजा उनकी आवाज में आप सुन रहे थे इस गाने को, जिसे लिखा था अनवर मकसूद ने, संगीत शलियम जेवियर के थे। इसके साथ ही गैर फिल्म गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का 3 मोती। फिल्म के इस गाने को लीजिए सुनिए कुमार सानू साधना सरगम की आवाजों में। दिलीप सेन समीर सेन ने संगीत से सजाया है। नवाब आरजू की ये रचना है।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत

तुम मुझे इतना प्यार करो। कुमार सानू साधना सरगम को आप सुन रहे थे अंदाज तेरा मस्ताना फिल्म के। इस गाने में गीतकार थे समीर, संगीतकार आनंद मिलिन। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है एफएम बैंड पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा

0: है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
1: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
0: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने के 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
6: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
0: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए डीएनए नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार डीएनए संबंधी जानकारी देना चाहते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मीनाक्षी से, आवाज़ सुखविंदर सिंह और साथियों की थी। गीत के बोल सुखविंदर सिंह के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लगान से। आवाज़ें उदित नारायण, वैशाली, आशा भोसले और साथियों की थी। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत एआर रहमान का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ड, बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जेन से, आवाज कविता कृष्णमूर्ति की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत एआर रहमान का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
2: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
0: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना,
2: सुबह और शाम 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म हाईवे से, आवाज ए आर रहमान की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्यारे लाल संतोषी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अगस्त 1916 को हुआ। एक निर्देशक के रूप में आपने 21 फिल्में निर्देशित की, कई गीत लिखे, स्क्रीन प्ले, आइडिया, संवाद, अतिरिक्त संवाद जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। निर्देशित फिल्मों में 1963 की फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: नजर।
1: हम एक हैं, ये वही फिल्म है जिसके माध्यम से पीएल संतोषी ने पहले पहल अपने निर्देशकीय गुण का परिचय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, दर्शकों को दिया। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, कमला कोटनिस, रहमान और देवानंद ने अभिनय किया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में पीएल संतोषी को असिस्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएल संतोषी के निर्देशन में 1947 में बनी उन्हीं की लिखी रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दुलारी और मुमताज अली अभिनीत शहनाई ने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी।

प्यारे लाल श्रीवास्तव, यही पीएल संतोषी का पूरा नाम था। जबलपुर से मुंबई कह सकते हैं एक संयोग की वजह से पहुंचे थे आप। हुआ यूं कि इनके गृह नगर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म यूनिट को संवाद असिस्टेंट की जरूरत थी, और प्यारे लाल जी चूंकि एक बेहतरीन लेखक थे, वो फिल्म

जी हाँ, हम बात कर रहे थे सन 1930 के मध्य में बॉम्बे पहुंचे पीएल संतोष जी की, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में इनकी कला को सराहा और इन्हें प्यार से अपनाया भी। 1937 में इन्हें जद्दनबाई की फिल्म मोती का हार के लिए कुछ एक गाने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

जद्दन बाई के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं पीएल संतोषी। इसी साल यानी 1937 में जीवन यापन में भी चार गाने आपने लिखे। यही वो समय था जब पीएल संतोषी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की छलांग लगाते रहे, रंजीत स्टूडियो से बॉम्बे स्टूडियो और फिर प्रभात फिल्म्स। जब वो प्रभात फिल्म्स में थे तब 1946 में हम एक हैं फिल्म के निर्देशक का सौभाग्य इन्हें मिला। इनके द्वारा निर्देशित ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये गीत है इसी फिल्म का, आवाज अमीर बाई कर्नाटकी की है, संगीत हुसन लाल भगतराम का है।

सन 1950 की फिल्म सरगम को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। फिर तो 1950 की ही अपनी छाया, 1952 की शिंचना की बुबला बू, 1952 की छम छमा छम, शिंचना की बुबला बू, संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तली

एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया और इस फिल्म का निर्माण किया था आर चंद्रा ने। रोमांटिक संगीतमय फिल्म के रूप में ये एक बेमिसाल फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

पीएल संतोषी अपने आगे आने वाले वर्षों में दोहरा नहीं पाए। प्यार की दास्तान, सबसे बड़ा रुपया, हॉलीडे इन बॉम्बे और फिर नूतन राज कपूर अभिनीत फिल्म दिल ही तो है, इनकी असफलता पर मरहम नहीं लगा पाई। सन 1968 में जगदीप और जयमाला काले को लेकर पीएल संतोषी की आखिरी निर्देशित फिल्म आई थी रूप रुपया। ये गीत है फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता का, आइए सुनते हैं।

संतोषी ने कई फिल्मों को संगीतमय बनाया। सन 1937 से कई फिल्मों में इनके गीत जगह पाते रहे। तूफानी रोटी, बाजीगर, बन के चिड़िया, रिक्शा वाला, आपकी मर्जी, पति पत्नी, ठोकर, अछूत, परदेसी जैसी फिल्मों में इनके गीत थे। ज्ञानदत्त और खेमचंद प्रकाश ने इनके गीतों को मौसिकी प्रदान की।

बॉम्बे टॉकीज में जब पीएल संतोषी थे तब इन्होंने अनजान और बसंत में गीतकार के रूप में गीत लिखे, जिनका संगीत निर्देशन पन्नालाल घोष ने किया था। यह है फिल्म बसंत का गाना पारुल घोष की आवाज में।

संतोषी और सी रामचंद्र के मिलाप से फिल्मों को ऐसे गाने मिले जो कर्णप्रिय तो थे ही, अपने समय से आगे के भी साबित हुए, जिनके साथ चल के कई गीतकारों संगीतकारों ने उस मार्ग को अपनाया और सफलताएं पाई। संतोषी के गानों में सिर्फ शब्द की

सन 1941 की अकेला, 1942 की स्टेशन मास्टर, 1951 की सौदागर, 1951 की ही घायल, 52 की अनहोनी, 1958 की दुल्हन और 1966 की अगलमन जैसी फिल्मों में आपने कई गीत लिखे। पीएल संतोषी ने लगभग 350 गीत 100 फिल्मों के लिए लिखे। एक निर्देशक और गीतकार के अलावा आप स्क्रीन प्ले राइटर और संवाद लेखक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। 1941 की झूला, स्टेशन मास्टर और निराला, 1950 की, 1958 की पोस्ट बॉक्स नंबर 999 और 1970 की मन की आंखें जैसी फिल्मों में रचनात्मक योगदान आपका रहा है। तमिल फिल्मों और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आपका फिल्मी योगदान रहा है। सन 1950 और 1960 के दशक में पीएल संतोषी ने फिल्म को सजाया, संवारा और मनमोहक बनाया। पीएल संतोषी के बेटे प्रसिद्ध फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने इस बात को माना था कि अपने आखिरी दिनों में इनके पिता पीएल संतोषी ने तेलुगु डब फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग भी की थी। 7 सितंबर 1978 को बॉम्बे में आपका देहावसान हुआ। शहनाई, बरसात की रात, दिल ही तो है जैसी फिल्मों को बनाने वाले और कई गीतों की रचना करने वाले पीएल संतोषी की बातें, गीतों और फिल्मों की यादों के साथ आज के फनकार का ये संगीतमय सफर हमने

FM 100.7 में घर्स पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात के 10 बजे हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम विविध संगीत का। कैलाश खेर की आवाज में सुनिए इस गाने को। संगीत है कैलाश परेश और नरेश के, शब्द रचना कैलाश खेर के ही हैं।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्री चरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात

0: होगी और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: सोनू निगम को आप सुन रहे थे। इस गाने में निखिल विनय ने धुन बनाई थी, फैज अनवर ने गीत को लिखा था। कार्यक्रम में सुनी लता मंगेशकर की मधुर आवाज में इंदिवर के लिखे गाने को। संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: भारती।
7: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: करोगे? अरे कुछ तो हमारे नाम कर दो।
1: चांद जैसे चेहरे को इसलिए पुकारेंगे।
0: गुफ्तगु हो रही है फूलों से, गुफ्तगु हो रही है फूलों से, शायरी तो फकत बहाना है। मैं कशी से बचे कहाँ तक, हम हर नजर एक शराब खाना है।

चेहरे पे उनके आज बहुत ही जलाल है, चेहरे पे उनके आज बहुत ही जलाल है। कश्मीर में अब बर्फ का गिरना मुहाल है। उस जिस्म को छुओ तो चमक जाए उंगलियां, उस जिस्म को छुओ तो चमक जाए उंगलियां। वो जिस्म है या रेशमी किरणों की शान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अल्ताफ राजा के गाए गाने को। मोहम्मद सैफी नियाजी ने धुन बनाई थी, अब्बास दाना ने गीत को लिखा था। इसके साथ ही गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध।

कार्यक्रम मनोरोज सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके रेडियो दोस्त रघुवर किच्चाव का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत फूल और कांटे फिल्म के इस गाने के साथ करते हैं, जिसे गाया है अलका याग्निक कुमार सानू ने। संगीतकार है नदमिन श्रवण, समीर ने गीत को लिखा है। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल और पत्र लिख भेजा है। सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दूलीचंद साहू, सतीबाई साहू, सत्यम साहू, मां महामाया चौक मेघापारा से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि

पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल, मैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र विजकांत सारथी बेमित्रा से, चकरभाटा कैंप से रूपचंद सिंहवानी, सपना सिंहवानी, गोविंदा सिंहवानी, जैन कृपाल, साधना शेरू, अम्मू कंचन, मीना सिंहवानी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारीराय कारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जय श्री पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा रोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया।

कार्यक्रम में आप सुनिए हीरो फिल्म के इस गाने को। मनहर उदास और लता मंगेशकर की आवाजों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, नीरज रावत, शुभम सौरभ रावत, ग्राम धुराबांधा भाटापारा से, प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, लिसनर्स नयन दास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, प्रीति दीवान, सिद्धांत, सौर्य कुमार जी, सानवी, महिमा और समस्त परिवार, मुकाम फुलसर व्याह कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से।

जयपुर से। सरोजनी रजक, सीमा रजक, कनक रजक, पल्लवी रजक, रश्मि साहू, गीता साहू, अनिल मानसी, कविता, गौरव अरोरा, मंदिर रोड, मोतीनगर, न्यू दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनिए लता मंगेशकर और मनहर उदास को।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला नगमा आपको सुनवाते हैं। अदालत फिल्म के गाने को लता मंगेशकर की मधुर आवाज है, संगीत दिया है मदन मोहन ने, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। गीत सुनने के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा छत्रपति, संभाजीनगर से राजेश सबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, लच्छनपुर से रामजी, लक्ष्मण वाधवानी, श्रीमती विमला वाधवानी, मास्टर हर्ष, खुशी, शुभम वाधवानी, यहीं से हैं राजपाल खिलवानी। सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अदालत के इस गाने में।

फिल्म है राजा रानी। लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से सजाया है। बोल हैं आनंद बख्शी के। पसंद करने वाले श्रोता साथी हैं आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह, जंघेल मोरस जंघेल, अनिल कुमार अजित कुमार, आयुष जंघेल, नंदनी जंघेल, कर्मा चौक लोहारडीह जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी ललिमा साहू, खुशान साहू, निशान साहू, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, धरसीमा से छिदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छनुलाल यादव, अनुराधा बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी प्रवीण साहू, सी एल यादव, इंदिरानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्य, मनोज मुकेश, अंकित साहित्य, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदरानगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेन्द्र कुमार वर्मा, नर्मदा धाम सुरसोली बालोद से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेन्द्र यादव, योगेश यादव।

तेरे मेरे सपने फिल्म के गाने में आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर को। सचिन देव बर्मन ने धुन बनाई थी, शब्द नीरज के थे। पसंद करने वाले श्रोता थे दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन, आदर्श नगर मलोर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा।

सौरभ शर्मा, शायना शर्मा, निवान शर्मा, ग्राम पहारा, जिला दुर्ग, पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम अनुरोध अब समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त रघुवर के साथ को आज के कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार। अनुरोध अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने वाले हैं। कुछ पलों में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही